साध संगत जी सत गुरां दी अपार कृपा बख्शिश रहमत दा सदका संध्या वेले दे सजे हुए दीवाना अंदर सत संगत दियां अमोलक घड़ियां दी बख्शिश होई है। गुरु घर दी मर्यादा अनुसार कथा विचारां दा समा होया है। आओ मान चित बिरतियां एकाग्र करिए।

कनौने काम माड़े दिल्ली ने इतने कनौने काम माड़े दिल्ली ने सिख जिंदे आगे लाके सारे दिल्ली ने सिख जिंदे आगे लाके

0: जिंदा दिल
1: जिंदा दिल सूर बीरा ने रोड़ी पई होवेगी पर साडी कौम दियां नीहां विच गुरु अर्जन देव पातशाह ने अपना शरीर अपने शरीर दी चरबी अपनियां पवित्र हड्डियां तदे तक कवि ने लिखिया है कि तत्ती तवी ते बैठ के किसे भौरे करनी सबर दी दसी है जंग तैनू आश किसे ने चांदनी चौक अंदर मर के जून दा दसिया ढंग तैनू मस्ती लथी ना तेरी मस्तानिया होए दिता समे ने सूली ते टंग तैनू ज्यों ज्यों सड़े तू भठियां विच पै पै त्यों त्यों चढ़े परवानिया रंग तैनू कोट कोट प्रणाम उस पातशाह महाराज दे मुबारक चरणा विच। आओ 6 जून 1984 का इतिहास चल रहा सी सा संगत दसिया सी पहले दिन साडे भाजी होना ने भी तीन घलू घारे होए ने तीन घलू घारे पहला होया कानू आन दी शंभ विच 1746 विच सतसंग जी ओह बगानिया ने किया दूजा घलू घारा अबदाली ने किया 1762 विच इन्ना वड्डा नुकसान मेरी कौम दा होया ते कहिंदे एक निहंग सिंह उठ के कहण लगा सी ओए अबदाली एक गल याद रख अजे भी मेरी कौम दा कुछ नहीं विगड़िया सतसंग जी उस कौम दे पल्ले की रहिंदा है जिहदा 35,000 माई भाई कोपरीड़े दे मैदान विच शहीद हो गया होवे पर उहदा जज्बा उहदा हौसला उहदे अंदर बाणी सतसंग जी बाणी ने अंदरों इन्ना उहनूं स्ट्रोंग कीता है उह कहिंदा ओए अबदाली एक गल याद रखी अजे ते खोट खोट ही चढ़िया सोना अजे बाकी है ये दलेरी सी साडे पुरखियां दी अज सानू किन्नियां सहूलतां रब ने दित्तियां है उन्हां साथों शुकराना नहीं हुंदा अजे बाकी है ये दलेरी सी साडे पुरखियां दी अज सानू किन्नियां सहूलतां रब ने दित्तियां है उन्हां साथों शुकराना नहीं हुंदा अजे बाकी है ये दलेरी सी साडे पुरखियां दी अज सानू किन्नियां सहूलतां रब ने दित्तियां है उन्हां साथों शुकराना नहीं हुंदा अजे बाकी है ये दलेरी सी साडे पुरखियां दी अज सानू किन्नियां सहूलतां रब ने दित्तियां है उन्हां साथों शुकराना नहीं हुंदा अजे बाकी है ये दलेरी सी साडे पुरखियां दी अज सानू किन्नियां सहूलतां रब ने दित्तियां है उन्हां साथों शुकराना नहीं हुंदा कि जित नहाता कौआ हंस हो है उस मुबारक स्थान दे उत्ते 6 लाख आर्मी ने सारे पंजाब नूं घेर लिया जम्मू कश्मीर तो लैके राजस्थान दे बार्डर तक भी पाकिस्तान कोई मत ना इन्हां दी करदे गुआंढी देश है इन्हां दे संबंध अणसिखावे ने और इन्हां दे संबंध चंगे ते साडे अणसिखावे ने बड़ियां सोचां सोच के सतसंग जी ये हमला कीता गया और एदे विच जनरल रणजीत दयाल जिहड़ा नरक धारियां दा चेला है और एदे विच जनरल वैद्या जिहड़ा फौज दा मुखी है एदे विच कुलदीप बराड़ जिहड़ा सत्कारयोग सतसंग जी जिहड़ा सब तो वड्डा मास्टरमाइंड जिहनूं गिणिया जांदा है जिन्हें बड़ी झूठ दी एक किताब भी लिखी संतां दे खिलाफ पर उहनूं साडे खालसे ने चढ़दी कला दे नाल और उहदे विच कमियां कढ के संतां दी जो शहादत होई सतसंग जी उहदे विच बड़ा कुछ तुसां उहदे विच तब्दीलियां कीतियां और नाल दे सूरमे हरशपाल सिंह पीए वर्गे उन्हां महान योधियां ने बहुत कुछ दस्या बाहर आके। खैर आओ समा ज्यादा हो जाणा सिंह साहब ज्ञानी लखविंदर सिंह होणी हजूरी कीर्तनीए सचखंड श्री हरिमंदर साहब पहुंच चुके ने एक कविता कह के मैं समाप्ति कर देनी है। इन्हां ने आख्या ऐ संत जी ओ बाहां खड़ियां बाहर करके आ जाओ असी ओ फौज हां जिन्हां ने 62 दा जंग और जिन्हां ने 71 दा जंग पाकिस्तान नूं लोहे दे चने चबा दिते पर इन्हां नूं भुलेखा सी ओह जंग साडे सिखां करके जिते सन क्योंकि जदों इंदिरा गांधी ने जनरल हरभगत सिंह नूं कहा सी ना भी पिछे आ जाओ सरहद आपां ब्यासा बना लैने आ उस महान योधे ने आख्या तेरा भला होवे साडा ननकाणा साहिब अगे उधर रह गया ते सचखंड श्री हरिमंदर साहिब ही छड्ड दईए उस मर्द दे जकारियां नाल ओह जंग जिते गए सन इन्हां नूं भुलेखा सी। आखिर सात संगत जिहड़े कहिंदे सन कि इन्हां कोल पौणे क 200 सिंह है ना कोई ऐटोमैटिक हथियार है इन्हां नूं हत्थों हत्थी फड़ लेना है अज सात सिंह जी 5 जून दा दिन चढ़िया जनरल शबेक सिंह जिहड़ा बाहर दे जिहड़ा सात सिंह जी बंगलादेश जी जित दा हीरो है जिन्हूं मान सम्मान देना सी पर सतसंग जी उस मर्द का कोर्ट मार्शल कर दिता गया उन्हें आखिया झूठी नौकरी ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਐਸਾ ਕੌਮੀ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਥੋੜਿਆਂ ਜਾਣਨਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉਸ ਮਰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜ ਕੇ ਸੀਨਾ ਛਲਣੀ ਹੋਇਆ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡੀ ਨਿਭ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜਰਨਲ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆ ਸਰਦਾਰ ਭੰਗੂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਸਨ ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਮੀਰਾਂ ਕੋਟੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 6 ਸਤੰਬਰ 1740 ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਸੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਲ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮਹਤਾਬ, ਨਾਲ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋ ਕੀ ਮਾੜੀ। ਆਓ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ ਉਸ ਮਰਦ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਸਦਾ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਰਾਜੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਸ਼ੱਦਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੰਦੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਨਮਾਨ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ ਜਰਨਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਥਾ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰ।
0: ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਅੱਤ ਮਚਾਈ, ਸੰਤ

0: वेख वेख मच गई दहाई, जरनल करनल सब घबराए, इन्नी कित्थों लई सिखलाई।
1: पता लगा शबेग सिंह है, फौजा ते सिंह भारू पाया, जरनल भाई शबेग सिंह जी धर्म दी खातर जिंद लगा गया।
0: किधरे बख्तर बंद जो गड्डियां टैंकां दे लगन गलतारे की तो

0: listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: एना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
1: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gerdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gerdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GerdaleBaudGroup.com.

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। अवतारी पुरुषानु सुते सिद्ध जगत वल्लों कुछ उपनाम मिलते ने जिनू तखल्लुस कहते ने, कोई खासियत देख के कोई अहमियत देख के उन्होंने नाम दिता जाता है। समुची जिंदगी मर्यादा विच बजी हुई देख के जगत दे मुंह निकलिया मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जिंदगी एक खेल है तमाशा है, जन्म नफा भी खेल नुकसान भी खेल जवानी भी खेल बुढ़ेपा भी खेल। जिसने ऐसा समझिया जानिया और जीविया देशवासियों ने उसनु कहा लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। पर जिसने महसूस कीता अनुभव कीता जगत दुख है जगत रोग है जगत मिथे है जगत ते बगदे हुए हंजू ने जगत ते एक पीड़ा है एक वेदना है जो समस्त जगत दी पीड़ा नाल भर गया और बुलंद बांग कहन लगा जगत एक पीड़ा है एक दुख है एक रोग है और उस रोग दा समाधान लेके उस रोग दी औषधि लेके जिसने देश देशांतरां दा रटन कीता और रोगियां नु स्वस्थ करदा रहा समस्त दुनिया दी जबान तो ये शब्द बुलंद बांग बुलंद होया बाबा वैद रोगियां दा बाबा वैद रोगियां। ये तो ऐसा बाबा आया जो रोगियां लई वैद है इसते कुल औषधि है। प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज दी इस गल नु समझना होवेगा जगत एक पीड़ा है तो जगत तो मुराद की लिए मनुख मनुख स्वयं एक पीड़ा है मनुख ही समस्या है। ये नहीं कि मनुख दियां समस्यावां ने नहीं मनुख खुद ही एक समस्या है। ऐसा है कि मनुख दियां वेदनावां ने मनुख दे दुख ने ऐसा नहीं मनुख खुद ही एक दुख है मनुख खुद ही एक पीड़ा है मनुख खुद ही एक वेदना है। जद मनुख है तो पीड़ा है मनुख है तो दुख है। और गुरु नानक इस दी शुरुआत इंज करदे ने जन्म दुख है जीवन दुख है मरण दुख है। सुख ते किधरे भी नहीं दिखाई देंदा जन्म भी पीड़ा है जीवन भी पीड़ा है मरण भी पीड़ा है। एक भ्रांति है मनुखा नु जन्म सुख है जीवन सुख है सिर्फ मौत पीड़ा है। तो जीवन भर जन्म दिन मनाना है क्योंकि जन्म सुख है जीवन दी लालसा रखनी है क्योंकि जीवन रस है मौत पीड़ा है इसनु भुलाना है मौत वेदना है इसनु गलत करना है। मौत ही दुख है ए चेते ना आवे। मनुख ने शमशान घाट भी बस्तियां तो दूर बनाए कब्रिस्तान भी शहरां तो दूर बनाए जीवदे जागदे मनुख दिखाई देन कब्रिस्तान ना दिखाई देन हसदे खिड़दे चेहरे दिखाई देन जल्दियों या लाशां ना दिखाई देन।
और घर विच कोई मृत्यु हो गई है तो कोशिश कीती जांदी है सारियां दे अंतिशकरण विच मौत बैठ जाए उस तो पहले इसनू घरों कढ़ो, इस तो पहलों कढ़ो, जला के खाक कर दो। जीवन चेते रहे, जन्म चेते रहे, मरण भुलाओ भुलाओ। ये पहला अवतारी पुरुष रूहे जमीन ते आया जिसने मनुखता दे सामने बुलंद वांग होके कहा जन्म दुख है। शायद तुसी सारे दुख दा ही जन्मदिन मना रहे हो और दुख दे जन्म दी खुशियां मनांदे हो यहीं नच रहे हो टप रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल बोध नहीं है, समझ नहीं है। मनुख नु दुख दी भी समझ नहीं। अगर दुख दी समझ आउंदी तो शायद उसनु ये समझ आ जांदी जन्म दुख है, जन्म दुख है। जन्म दा बोध नहीं है इस वास्ते दुख दा बोध नहीं है, दुख दा बोध नहीं है इस वास्ते जन्म दा बोध नहीं है। जीवन दी लालसा है, दुख दा ज्ञान नहीं है इस वास्ते कह सकते हैं जीवन दा भी ज्ञान नहीं। और धार्मिक दार्शनिक ऐसा कहंदे ने जो मेरी समझ दे च नहीं ओ नहीं है, कम से कम मेरी दुनिया दे ते नहीं है। होवेगा परमात्मा, होवेगा किधरे सुख, होवेगा दुख, होवेगा कलेश, पर मेरी समझ दे च नहीं तो नहीं है। जैसे पत्थर दी दुनिया च कोई कलेश नहीं है, कोई सुख नहीं है, ना सुख दा बोध ना दुख दा बोध, ना दिन दा ज्ञान ना रात दा ज्ञान, ना सर्दी महसूस होंदी है ना गर्मी महसूस होंदी है। पत्थर ही सिर्फ पत्थर नहीं, बहुते दिल बहुते दिमाग मनुखां दे पत्थर ही ने, बिल्कुल पत्थर ने। अगर दुख दा बोध नहीं है और वाकई नहीं है, और सुख दा ज्ञान नहीं है और वाकई नहीं है, तो इस दिल नु क्या कहिए, इस दिमाग नु क्या आखिए, ये तो पत्थर है। जो मेरी समझ देच नहीं वो नहीं है, कम से कम मेरी दुनिया दिखते नहीं है क्योंकि मैनू उसकी समझ नहीं है। जिस जिस चीज दी मैनू समझ नहीं है वो नहीं है मेरी दुनिया च। अगर परमात्मा भी मेरी समझ देच नहीं है तो कम से कम मेरी दुनिया दिच परमात्मा नहीं है, भावे होवे भावे जगत दिच है पर मेरी दुनिया दिच नहीं है। धन गुरु नानक देव जी महाराज बहुती मनुखता तो बिना जी रही है और समझ नहीं तो परमात्मा नहीं, या इंज कह लईए बहुती मनुखता परमात्मा दे होंदिया होया परमात्मा तो बिना जी रही है, जैसे अंधा सूरज दे होंदे होया सूरज तो बिना जीवंदा। रोशनी ते चारों पासे फैली हुई है, प्रकाश ते डुल डुल के पै रहा है, पर अंधा इतने प्रकाश दे होंदे होया प्रकाश तो बिना जी रहा है। परमात्मा दे होंदे होया बहुती मनुखता परमात्मा तो बिना जी रही है। एक सच्चाई है, एक हकीकत है, और इतनी भी अगर समझ आ जाए तो समझ लेना चाहिए है। समझ दी दुनिया आरंभ हो गई, समझ दे मार्ग ते मनुख चल पे है। केड़ी समझ? जो मेरी समझ देच नहीं वो नहीं है, ये सब तो वड्डी समझ है। जो मेरी समझ देच नहीं, जो मेरे बोध देच नहीं वो नहीं है, ये सब तो वड्डा ज्ञान है।

गुजरी राग विच धन धन श्री गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह जी का यह मुकद्दस पावन शब्द रागी सिंघां लई दूजे घर सुरताल विच गाउण दा हुक्म है। इस पावन शब्द के पहले चार पदियां की व्याख्या आप संगत ने कल गुरमुख प्यारियां पासों सरवण कर ली सी। अगले चार पदियां की व्याख्या आप संगत दे सन्मुख करन दा निमाणा जतन करांगा। बन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन प्रतख हर खुद खुदा गुरु अर्जन साहब। जो इस पावन बाणी दे विच अपने निर्गुण स्वरूप वाहिगुरु की महिमा बयान करते ने कहते दुनिया दे विच बड़े दरबार ने। दरबार फारसी का लफ्ज़ है, मजलस नूं आखीदा है, बादशाह की सभा। और ये जिन्ने भी दरबार ने ये सदीवी टिके नहीं रह सकते। ना तखत का मालक ही सदा रहिंदा है। परमेश्वर तेरा दरबार सदा अटल है, तेरी हस्ती अटल है। इत्थे दरबार का भाव सचखंड है। महाराज गुरु ग्रंथ साहिब विच वार वार समझाते ने। उन्हां नूं पता है भी जो बंदे नूं नज़री नहीं आउंदा है जल्दी मनेगा नहीं। इनविजिबल थिंग्स जो अखां दा विशा नहीं है, जो विजिबल है वह मन लैंदे आ, दिखदा है। जो नहीं दिखदा असीं नहीं मानदे। बाणी च लिखिया है सच खंड वसै निरंकार। हुण उह निरअकार है, दिखदा नहीं, उहदा दरबार भी नहीं दिखदा। सच खंड वह टुकड़ा जिथे सच स्वरूप वाहिगुरू है। दूसरा भाव सच खंड का है वह हिरदा जिथे सच है। तीसरा भाव गुरु दरबार जिथे सच बोलिया जाता, सच्चे की उस्तत है। तो इत्थे पहला भाव है वह जगह जिथे निर्गुण स्वरूप प्रफुल्लत है। कोई भी दरबार है सारे ही सच्चे ने, साचा साहिब। सच दरबार कीमत कौन कहै विचार। उहदा दरबार सच्चा है, वो आप भी सच्चा है, सदी भी है, टिकिया रहण वाला है। सच तेरी सामग्री, सच तेरा दरबारा, सच तेरे खाजीनिया, सच तेरा पासारा। तो प्रभु ना रिलेटेड जो कुछ भी है वह सब सच है। कहिंदे वाहिगुरू किसी भी राजे दे दरबार अंदर शरण ग्रहण करिए, जरूरी नहीं है तुहानू पनाह मिल जाए। बाहर भी कढ़िया जा सकदा धक्के मार के। तेरे दरबार की एक खासियत है, जेड़ा शरण आउंदा है तू उन्हां दी रक्षा करदा है। जो तेरी ओट विच आ गया उन्हां दी तू हिफाजत करदा है। इत्थे लफ्ज़ वरत्या है टीका, टिक्का, चमक वाला। सब दरबारां चों तेरे दरबार दी चमक बुलंद है। तू सब नू रखण वाला है, रख्या करन वाला है। तेरे दरबार दी महिमा इउं प्रफुल्लत है जिवें तारियां चों चन्न दी महिमा वध के है। अगे गुरु अर्जन साहिब कहिंदे लखमी केतक गनी ना जाइए गन ना सको सीका। बहुत तुसी माता लक्ष्मी दी पूजा करदे हो सनातन मत विच। सिखी दा सिद्धांत है काल पुरख दी पूजा करो, क्योंकि पता ही नहीं किन्नियां लक्ष्मी वर्गियां देवियां उहदी सेवा विच लगियां ने।
ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਬੇਅੰਤ ਦੇਵੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਏਡੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਸੀਕਾ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਸਿੱਕਾ ਮੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰੰਸੀ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਸੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸੂਰਜ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਗਲੈਕਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नूं दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तों दुख नहीं निकलदा, किसे नूं मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तां मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: साध संग बस अगोचर लह
1: साधु कै संग अजर सह
0: साध का संग बस है थान ऊंचे
1: साधु कै संग महर पहुंचे
0: साध का संग दृढ़ सब धर्म
1: साध का संग केवल पार ब्रह्म
0: साध का संग पाई नाम निधान
1: नाग साधु के कुर्बान
0: साध का संग सब कुल उधार है
1: साध संग साधन बीत कुटम निस्तार है
0: साधु कै संग सो धन पावे
1: जिस धन ते सब को बरसावे
0: साध संग धर्म राय करे सेवा
1: साध का संग सो पासुर देवा
0: साधु कै संग पाप पलायन
1: साध संग अमृत गुण गायन
0: साध का संग सर्प थान गम
1: नानक साध का संग सगल जन्म
0: साध का संग नहीं कशकाल
1: दर्शन भेट तो होत नहाल
0: साध का संग कुलूकत हर है
1: साध का संग नरक पर हर है
0: साध का संग इहा उहा सुहेला
1: साध संग मिश्रित हर मेला
0: जो इच्छा सोई फल पावे
1: साध का संग न बिरथा जावे
0: पार ब्रह्म साध रित बसे
1: नानक कुदरे साध सुन रसे
0: साध का संग सुनो हर नाम
1: साध संग हर के गुण गाओ
0: साध का संग न मनते बिसरे
1: साध संग सर परमेश्वर है
0: साध का संग लगे प्रभु मीठा
1: साधु का संग करगड़ जीठा
0: साध संग भय आज्ञाकारी
1: साध संगत भय हमारी
0: साध का संग मिटे सब रोग
1: नानक साध भेटे संजोग
0: साध की महिमा वेद न जाने हैं
1: जिता सुने तेता बखियान
0: साध की उपमा तेह गुण ते दूर
1: साध की उपमा रही भरपूर
0: साध की शोभा का नाही अंत
1: साध की शोभा सदा बेअंत
0: साध की शोभा ऊंचते ऊंची
1: साध की शोभा मूचते मूची
0: साध की शोभा साध बनाई
1: नानक साध प्रभ भेद न पाई श्लोक
0: मन साचा मुख साचा सोई अवर न पेखे
1: कस बिन कोए
0: नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए
1: अष्टपदी
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप
1: जैसे जल में कमल लेप
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
1: जैसे सूर सर्व को सुख
0: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान
1: जैसे राज रंक को लागे तुल पवान
0: ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक
1: ज्यो बसदा को खुद को चिंतन ले
0: ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ
1: नानक ज्यो पाप का सह स्वभाव
0: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
1: जैसे मैल न लागे जला
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश
1: जैसे तर ऊपर आकाश
0: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्र समान
1: ब्रह्म ज्ञानी के ढाई अभिमान
0: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा
1: मन अपने है सब ते नीचा
0: ब्रह्म ज्ञानी से जन भये
1: नानक जन प्रभु आप करे
0: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना
1: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
0: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया
1: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
1: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
0: ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास
1: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा
1: ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा
0: ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा
1: ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा
0: ब्रह्म ज्ञानी का होय सुफला
1: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
0: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी जप सगल संसार
0: ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग
1: ब्रह्म ज्ञानी का बसे प्रभ संग
0: ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाम परवार
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत
1: ब्रह्म ज्ञानी अंगुद त्यागत
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
1: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद
0: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का पिता
1: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
0: ब्रह्म ज्ञानी का होय अचिंत
1: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
0: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप
1: ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप
0: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है
1: ब्रह्म ज्ञानी को पर बल जाई है
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे है महेश्वर
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है
1: ब्रह्म ज्ञानी के सगलवान माहे
0: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने थे
1: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश
0: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अदा अखर
1: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
0: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने
1: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता
1: ब्रह्म ज्ञानी सत जीव है नहीं मरता
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
1: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता
0: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार
1: ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार
0: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक
0: और तारै जो अंतर नाम सर्व में देखे भगवान निमक निमक
1: ठाकुर नमस्कार नानक ओह अपरस सगल निस्तार अष्टपदी
0: मिथ्या नाही रसना परस
1: मन में प्रीत नरंजन दर्स
0: कर्त्या रूप न देखे नेत्र
1: साध की टहल संत संग हेत
0: कर्ण न सुने काहू के निंदा
1: सबते जाने आप को मंदा
0: और प्रसाद दिखिया पर हर है
1: मन की वासना मन ते टर
0: इंद्री जत पंच दोख ते रहत
1: नानक कोट मदे को ऐसा है परस
0: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
1: विष्ण की माया ते हुए भिन्न
0: कर्म कर्त हो वैने कर्म
1: इस वैष्णो का निर्मल धर्म
0: काहू फल की इच्छा नहीं बंचे
1: केवल भगत कीर्तन संग रचे
0: मन तन अंतर सिमरन गोपाल
1: सब ऊपर होवत कृपाल
0: आप दृढ़ है अबरह नाम जपावे
1: नानको वैष्णो परम गत पावे
0: भगवती भगवंत भगत का रंग
1: सगल त्याग दुष्ट का संग
0: मन से बिन सह सगला परम
1: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
0: साध संग पापा मल खोवे
1: इस भगवती की मत उत्तम होवे
0: भगवंत की टहल करे नित नीत
1: मन तन अर्पे विष्ण प्रीत
0: हर के चरण हृदय बसावे
1: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
0: सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है
1: राम नाम आत्म सुध
0: राम नाम सार रस पीवे
1: उस पंडित के

0: ਜਗ ਜੀਵੈ
1: ਪਰ ਕੀ ਕਥਾ ਹਿਰਦੈ ਪਸਾਵੈ
0: ਸੋ ਪੰਡਤ ਫਿਰ ਜੋਨ ਨ ਆਵੇ
1: ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਬੂਝੈ ਮੂਲ
0: ਸੁਖ ਮੈਂ ਜਾਣੈ ਅਸਤੂਰ
1: ਜੋ ਵਰਨਾ ਕੋ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼
0: ਨਾਨਕ ਉਸ ਪੰਡਤ ਕੋ ਸਦਾ ਦੇਸ
1: ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨ
0: ਜੋ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਜਪੇ ਕੋ ਨਾਮ
1: ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ
1: ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਅੰਤਰ ਉਰਤਾਰੈ
0: ਬਸ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਕਤ ਪਾਤਰ ਕੋ ਉਤਾਰੈ
1: ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ
0: ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਕਾਮ
1: ਕਾਹੂ ਜੁਗਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਾਈਐ ਧਰਮ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਰਮ
1: ਜਿਸ ਕੈ ਮਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਨਿਵਾਸ
0: ਜਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਸਤ ਰਾਮ ਦਾਸ
1: ਆਤਮ ਰਾਮ ਤਿਸ ਨਦਰੀ ਆਇਆ
0: ਦਾਸ ਸੰਤਨ ਪਾਏ ਦਿਨ ਪਾਇਆ
1: ਸਦਾ ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਹਰ ਜਾਨ
0: ਸੋ ਦਾਸ ਦਰਗਾਹ ਪਰਵਾਨ
1: ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ
0: ਜਿਸ ਦਾਸ ਕੋ ਸਭ ਸੋ ਜੀ ਪਰੈ
1: ਸਗਲ ਸੰਗ ਆਤਮ ਉਦਾਸ
0: ਅਸੀਂ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਦਾਸ
1: ਸਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ
0: ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੈ
1: ਤੈਸਾ ਹਰਕ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ
0: ਸਦਾ ਅਨੰਤ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ
1: ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ
0: ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖਾਟੀ
1: ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ
0: ਐਸਾ ਰੰਗ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ
1: ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ
0: ਨਾਨਕ ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਹੀਏ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਉ
0: ਜਿਤ ਜਿਤ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਤੈਸਾ ਤਿਨਾ
1: ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਜੋਗ
0: ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਪਨ ਹੋਗ
1: ਅਸਰਿਓ ਆਪ ਹੋਏ ਅੰਤ ਤਰੰਗ
0: ਲਖਿਆ ਨ ਜਾਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਰੰਗ
1: ਜੈਸੀ ਮਤ ਦੇ ਤੈਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
0: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾ ਅਵਿਨਾਸ਼
1: ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਯਾਲ
0: ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਪਏ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ
1: ਉਸਤ ਕਰੇ ਅਨੇਕ ਜਨ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰ
0: ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ ਬਹੁ ਵਿਦਿਆਨਕ ਪਰਕਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੂਜਾਰੀ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਬਨ ਪ੍ਰਮੈ ਉਦਾਸੀ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਬੀਰ ਕੇ ਸਰੋਤੇ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਤਪੀ ਸਰਹੋਤੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰੇ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਕਵ ਕਾਵ ਵਿਚਾਰੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਨਵਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹੇ
0: ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਵੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਅਭਿਮਾਨੀ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਭਿਗ ਆਤਮ ਨੇ ਕੋਰ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦਰਬ ਕੋ ਹਿਰਹੇ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੁਖ ਨਾ ਕਰੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਸ਼ਰਮ ਮਾਹੀ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰਮਾ ਹੈ
1: ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੋ ਤੇ ਤਿਤ ਲਗਣਾ
0: ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਉਪਾਏ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਰ ਬਿਰਖ ਨਿਪਜਾਏ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ਼ ਭੂ ਮੰਡਲ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਸਸਿਆ ਸੂਰ ਨਖਤਰ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਇੰਦਰ ਸ਼ਰ ਛਤਰ
1: ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਧਾਰੈ
0: ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰੈ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਾਤਕ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤਿ ਅਰ ਸ਼ਾਸਤਰ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਏ ਚਿਰ ਦੀਵੇ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸਵਰਨ ਥੀਵੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਜਖ ਕੇ ਨਿਰਪਸਾਚ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁ ਕਰਮ ਰਿਕਾਚ
1: ਸਾਤੇ ਨੇਰਾ ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਦੂਰ
0: ਨਾਨਕ ਆਪ ਲਿਪਤ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮ ਹੈ ਜੀਵੈ ਮਰ ਹੈ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਫਿਰੈ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠ ਸਹੀ ਖਾਹੇ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਕਾਲੇ ਥਕ ਪਾਹੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਏ ਧਨਵੰਤ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਮੈਂ ਚਿੰਤ
1: ਜੈ ਜੈ ਭਾਣਾ ਤਹਿ ਤਹਿ ਰਾਖੀ
0: ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਬੈਰਾਗੀ
0: ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗਤ ਲਿਵ ਲਾਗੀ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋ ਜੰਤੇ
0: ਆਤਮ ਮਹਿ ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਸ
0: ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਵਿਨਾਸ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗ ਹੈ ਸਤਸੰਗ
0: ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ
1: ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ
0: ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰਖੰਡ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ
0: ਕਈ ਜਗ ਕੀ ਨੋ ਵਿਸਥਾਰ
1: ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਕਾਰ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ
0: ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਤ
1: ਤਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ
0: ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ
0: ਜਿਨ ਹੋ ਵਤਿਆ ਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਦੇਤੇ
0: ਸਦਾ ਨਿਹਾਰੈ ਇੱਕੋ ਨਿਤਰੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ ਹੈ
0: ਅਮਰ ਭਏ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੈ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵਹੇ
0: ਆਤਮ ਰਸ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਵੈ
1: ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਮਾਰੀ
0: ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਲੋਕ
1: ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਈ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰ ਨੇ ਜਲ ਥਲ ਮਈ ਅਲ ਸੋਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗ
0: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ
1: ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਪ ਉਤਾਪ ਨਹਾਰਾ
0: ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ
1: ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਅਧਾਰ ਰਹਾਵੈ
0: ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ
1: ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ
0: ਹੁਕਮੇ ਅਨਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ
1: ਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ
1: ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਮਨ ਉਗਤ ਪਾਵੈ
0: ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਤਰ ਤਰਾਵੈ
1: ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰੱਖੈ
0: ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ
1: ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤ ਉਧਾਰੈ
0: ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਨ ਵਿਚਾਰੈ
1: ਦੋਹਾਂ ਸਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ
0: ਖੇਲੈ ਬਿਕਸੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ
1: ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ
0: ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰਨ ਆਵੈ
1: ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਆਵੈ
0: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ
1: ਇਸ ਕੇ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਪਿਛਲੇ
0: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ
1: ਮਨ ਜਾਣਤ ਵਿਖਿਆ ਮਹਿ ਰਚੈ
0: ਜੇ ਜਾਣਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚੈ
1: ਭਰਮੇ ਭੂਲੈ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਵੈ
0: ਨਮਖ ਮਾਹੀ ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਫਿਰ ਆਵੈ
1: ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ
0: ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ
1: ਛਿਨਵੈ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ
0: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ
1: ਜਾਂ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੈ
0: ਜਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ
1: ਜਾਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸ਼ੀਸ
0: ਨਾਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਗਣੇ ਜਗ
1: अपनी बनत आप बनाई
0: नानक जीवै देख वडाई
1: इसका बल नाही सहा
0: कल करावन सर्व को नाथ
1: आज्ञाकारी बपरा जियो
0: जोत सभावै सोई फन थी
1: अब हूँ ऊंच नीच मैं बसै
0: हूँ सोग हर करंग हसै
1: अब हूँ निंद चिंद व्यवहार
0: उपकाश प्याल
1: अब हूँ बेता ब्रह्म विचार
0: नानक आप मिलावन हार
1: अब हूँ नृत्य करे बहुभांत
0: अब हूँ सोए रहे दिन रात
1: अब हूँ महाक्रोध विकराल
0: अब हूँ सर्व की होतर वाल
1: अब हूँ होए बह बड़ राजा
0: अब हूँ भिखारी नीच का साजा
1: अब हूँ अब कीर्त में आवे
0: अब हूँ भला भला कहावे
1: ज्यो प्रभु राखे ते भी रहे
0: गुर प्रसाद नानक सच कहे
1: अब हूँ होए पंडित करे बख्यान
0: अब हूँ मौन तारी लावे ध्यान
1: अब हूँ तट तीर्थ स्नान
0: अब हूँ सिद्ध साधक मुख ज्ञान
1: अब हूँ पीठ हस्त पतंग होए दिया
0: अनक जौन परमिया परमिया
1: नाना रूप ज्यो स्वांगी दिखावे
0: ज्यो प्रभु पावे तवे न जावे
1: ज्योत पावे सोई होए
0: नानक दूजा अवर न कोए
1: अब हूँ साध संगत पावे
0: उस स्थान ते बौर न आवे
1: अंतर होए ज्ञान प्रकाश
0: उस स्थान का नहीं विनाश
1: मन तन नाम रते एक रंग
0: सदा बसै पर ब्रह्म के संग
1: ज्यो जल मह जल आए कटाना
0: ज्यो ज्योति संग ज्योत समाना
1: मिट गए गबन पाए विश्राम
0: नानक प्रभु के सद कुर्बान श्लोक
1: सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले
0: बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी
1: जिसके अंतर राज अभिमान
0: सो नक पाती होवत स्वान
1: जो जान है मैं जो बनवंत
0: सो होवत विष्टा का जंत
1: आप को कर्मवंत कहावे
0: जन्म मरे बो जोन परमावे
1: धन भूम का जो करे गुमान
0: सो मूर्ख अंधा अज्ञान
1: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे
0: नान की है मुक्ति अगै सुख पावे
1: धनवंत होए कर गर्भावे
0: तरण समान का संग न जावे
1: बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस
0: पर भीतरता का होए विनाश
1: सते आप जाने बलवंत
0: होए जाए पसमंत
1: सेना बदे आप अहंकारी
0: धर्म राय तिस करे खुआरी
1: गुर प्रसाद जहाँ का मिटे अभिमान
0: सोजन नानक दरगाह परवान
1: कोट कर्म करे हों तारी
0: शरम पावे सकले बरथारे
1: अनक तपस्या करे अहंकार
0: नरक स्वर्ग फिर अवतार
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
0: हर दरगाह को कैसे गवे
1: आप को जो भला कहावे
0: किसे भलाई निकट न आवे
1: सर्व की रेन जहाँ का मन होए
0: कहो नानक ताकि निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझ ते कश होए
0: जब इस को सुख नाही कोए
1: जब यह जाने मैं किस करता
0: तब लग गर्भ जोन में फिरता
1: जब तारे को बैरी मीत
0: जब लग नेचर नाही चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
0: तब लग धर्म राय देश जाए
1: प्रभु कृपा से बंधन टूटे
0: गुरु को साधना अनक हो छूटे
1: सहस कटे लख कोट तावे
0: रत्न आवे माया पाछे पावे
1: अनक भोग विखिया के करे
0: नैत बतावे खप खप मरे
1: बिना संतोख नहीं को राजे
0: सपन मनोरथ फिर से सब काजे
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: प्रभागी किसे प्राप्त होए
1: कर्ण करावन आपे आप
0: सदा सदा नानक हर जाप
1: कर्ण करावन करने हार
0: इसके हाथ कहां विचार
1: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
0: आपे आप प्रभु सोए
1: जो किस पीनो सो अपना रंग
0: तब ते दूर सब हूँ कै संग
1: दूजा देखे करे विवेक
0: आपे एका पै अनेक
1: मरे न बिनसै आवै न जाए
0: नानक सधी रह समाए
1: आप उपदेशै समझे आप
0: आपे रचिया सब कै साथ
1: आप पीनो आपन विस्तार
0: सब कुछ उसका हो करने हार
1: कोसते पेन कहो किस होए
0: हाथ नंतर एक है सोए
1: अपने चलित आप करने हार
0: गौत करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माहे
0: नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुर प्रसाद के नै बखियानी
1: सत सत सत सब कीना
0: कोट मदै के बिरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अत सुंदर अपार अनूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: कट कट सुने सर उन बखियानी
1: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
0: नाम जपे नानक मन प्रीत श्लोक
1: संत शरण जो जन पर सो जन उदर नहार
0: संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी
1: संत का दुखन आर जा कटे
0: संत का दुखन जमते नहीं छुटे
1: संत का दुखन सुख सब जाए
0: संत का दुखन नरक में पाए
1: संत का दुखन मत हो ही मलीन
0: संत का दुखन शोभा दे ही
1: संत के हथे को रखे न कोई
0: संत का दुखन थान भ्रष्ट हो
1: संत कृपाल कृपा जे करे
0: नानक संत संग निंदक भी तरे
1: संत के दुखन ते मुख पवे
0: संतन के दुखन काग ज्यो लवे
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
0: संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए
1: संतन के दुखन तृष्णा मह जलाए
0: संत के दुखन सब को छले
1: संत के दुखन तेज सब जाए
0: संत के दुखन नीच निचाए
1: संत दुखी का थाउ को नाही
0: नानक संत भावे ता ए पी कत पाए
1: संत का निंदक महा अतताई
0: संत का निंदक खिन टिकन न पाए
1: संत का निंदक महा हत्यारा
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा
1: संत का निंदक राज ते हीन
0: संत का निंदक दुखिया अर्दीन
1: संत के निंदक को सर्व रोग
0: संत के निंदक को सदा बिजोग
1: संत के निंदा दुख में दुख
0: नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख
1: संत का दुखी सदा पवित्र
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित
1: संत के दुखी को डान लग
0: संत के दुखी को सब त्यागै
1: संत का दुखी मां अहंकारी
0: संत का दुखी सदा बेकारी
1: संत का दुखी जन्म मरै
0: संत की दुख न सुख ते तरै
1: संत के दुखी को ना ही ठाऊं
0: नानक सत भावै ता लए मिलाए
1: संत का दुखी अद बीज ते टूटै
0: संत का दुखी कित काज न पहुंचै
1: संत के दुखी को उद्यान परमाइयै
0: संत का दुखी उजड़ पाइयै
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा
0: जो सास बिना मृत की लोथा
1: संत के दुखी की जड़ किस नाही
0: अपन बीजिया पे ही खाहे
1: संत के दुखी को अवर न रखन हार
0: नानक सत भावै ता लए उबार
1: संत का दुखी इउं बिल लाए
0: जो जल बे हुन मछली तड़फड़ाए
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजै
0: जो पावक ईंधन नहीं त्रापै
1: संत का दुखी छुटै अकेला
0: जो बवार तिर खेत माहे दुहेला
1: संत का दुखी धर्म ते रहत
0: संत का दुखी सत मिथ्या कहत
1: कीर्तने दुखा तुर ही पया
0: नानक जो तिस भावै सोई थिया
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
0: संत के दुखी को दरगह मिलै सजाए
1: संत का दुखी सदा सहकाइए
0: संत का दुखी ना मरै ना जिवाइए
1: संत के दुखी की पूजै ना आसा
0: संत का दुखी उठ चले निराशा
1: संत के दुख न त्रिष्टै कोई
0: जैसा भावै तैसा कोई होए
1: भया कीर्तन मिटै कोई
0: नानक जाने सच्चा सोए
1: सब कर तिसकी ओ करने हार
0: सदा सदा तिसको नमस्कार
1: रब की उसत करहु दिन रात
0: तिसे त्यागो सास ग्रास
1: सब कछ वर्तै तिसका किया
0: जैसा करे तैसा को थिया
1: अपना खेला करने हार
0: दूसर कौन कहे विचार
1: जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे
0: वडपा की नानक जन से श्लोक
1: तजो सियान पुसुर जन हो सिमरो हर हर राय
0: एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पौ जाए अष्टपदी
1: मनुख की टीक बिरथी सब जान
0: देवर पौ एक है भगवान
1: जिसके दिया रह अगाहे
0: और न तृष्णा लागे आए
1: मारे रखे एको आप
0: मानक कह कुछ ना ही हाथ
1: जिसका हुक्म भू सुख होए
0: जिसका नाम रख कंठ परोए
1: सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए
0: नानक बिघन न लागे कोए
1: उसत मन में कर निरंकार
0: कर मन मेरे सत व्यवहार
1: निर्मल रसना अमृत पियो
0: सदा सहेला कर ले जियो
1: नैनो पेक ठाकुर का रंग
0: सदा संग पन सह सब संग
1: चरण चलो मार्ग गोविंद
0: मिटा पाप जपिए हर बिंद
1: हर हर कर्म श्रवण हर कथा
0: हर गया नानक उजल मथा
1: बड भागी ते जन जग माहे
0: सदा सदा हर के गुण गाहे
1: राम नाम जो करे विचार
0: चेतन मंतक नि संसार
1: मन तन मुख बोले हर मुखी
0: सदा सदा जानो ते सुखी
1: एको एक एक पछाने
0: एतो तकियो सोजी जाने
1: नाम संग जिस का मन मानिया
0: नानक तने निरंजन जानिया
1: गुर प्रसाद अपने आप सुजै
0: जिसकी जानो तृष्णा बुझै
1: साथ संग हर हर जस कहत
0: सर्व रोग त्यो हर जन रहत
1: धन दिन कीर्तन केवल बखियान
0: रस्तमा सोई निर्वाण
1: एक ऊपर जिस जन की आसा
0: जिसकी कटिए जम की फसा
1: पार ब्रह्म की जिस मन भूख
0: नानक प्रसन्न लागे दुख
1: जिसको हर ब्रह्म मन चित आवे
0: सो संत सोहेला नहीं बुलावे
1: जिस प्रभु अपना कृपा करे
0: सो सेवक को किस ते डरे
1: जैसा सा तैसा दृष्ट आया
0: अपने कार्य में आप समाया
1: सोधत सोधत सोधत सीजिया
0: प्रसाद तत् सब पूजिया
1: जब देखो तब सब शमूल
0: नानक सो सूखम सोई स्थूल
1: मैं किस जन मैं नहीं किस मरे
0: अपने चलते आप ही करे
1: आवन जावन दृष्ट अन दृष्ट
0: आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट
1: आपे आप सगल में आप
0: जुग तरच था प्यो था
1: अविनाशी ना ही किस खंड
0: धारण धार रहे हो ब्रह्मांड
1: लख पे पुरख प्रताप
0: आप जपाए था नानक जाप
1: दिन प्रभ जाता सो सो बावंत
0: सगल संसार उदरे तन मंत
1: प्रभ के सेव सगल उदारन
0: प्रभ के सेवक दुख बिसारन
1: आपे मेल लय कृपाल
0: गुर का शब्द जप भय निहाल
1: उनकी सेवा सो ही लागे
0: जिसनो कृपा करे बट भागे
1: नाम जपत पावे विश्राम
0: नानक तन पुरख को उत्तम कर मान
1: जो किस करे सो प्रभ के रंग
0: सदा सदा बसै हर संग
1: सह सुपाई हो वैसो हो
0: करने हार पछाने सोए
1: प्रभ का किया जन मीठ लगाना
0: जैसा सा तैसा दृष्टाना
1: जिसकी उपजे तिस माही समाई
0: सुख निधान उन्हों बनया।

उड़ उड़ रावा चाटे पाए देखे लोक शेकर जाए रोटियां कारण पूरे तालाब छाड़े धरती नार गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपो निरंकार सच।

पौड़े बिन सतगुरु कि ना पायो, बिन सतगुरु कि ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिल गए सदा मुक्त है जिन विच हो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता।

पौड़ी सेब की संतोखी जिन सचो सच त्याया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सो कित धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

पौड़ी सच्चा साहेब एक तुझने सचो सच बरताया, जिस तू दहेज से मिले सच ता तिने सच कमाया, सतगुर मिलिए सच पाया, जिनके हृदय सच।

0: महला पहला पर गड्डी लदिए पर परिये साथ पर बेड़ी पाइए पर गड्डिए खात पर ये है जेते वर्ष वर्ष पर ये जेते मास पर ये जेती आर जा पर ये जेते सास नानक लेखे की गल और हो में जखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया तेता कड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या

0: तुम्हा पुरा तपे का सात गेर तुम्हा हो काजुगरा थगन का कूड़ा गैर तुम्हा हो
1: पहला शाम कहे सितंबर समय सच में अच्छा सच रहे।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पठानी अमलकिया
1: चार वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाओ भगत कर नीच।

0: ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया, सबको आख पाए हुए प्राणा सटिए फिर पाया हो रे नानक तग न टुटे जे तग हो वै जो।
1: महला पहला नाय मनिए पत उपजे साला ही ससूत डर के अंदर पाइए तग न टूट सपूत। महला पहला तग न इंद्री तग न नारी पड़के थुक पवे निकारी तग न प्यारी तग न हथी तग न जेवा तग न अखी बे तग आया पे बते।

ला जे सूतक मनिए सब ते सूतक होए, गोया ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए, जे ते दाने अनक जिया बाज ना कोए, पहला पानी जीव हज थरिया सब कोए, सूतक क्यों कर रखिए।

उपाय कहे। पावपन जन है, अर्गंजन है, रिपतापन है, जब जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हर्ता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस के जस है, भुजंग प्रयात छंद

नमो बीज बीजे नमो राज संताम संग शांत रूपे नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नमो अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार लंके नमो यास यासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे नंगी नामे त्रपंगी त्रकाले अनंगी अकामे

जय अलेखे भुजंग प्रियात शांद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे नर काम विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतरमंग विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी क्रीमुल कनिंदा समस्तुल निवासी अजायब विभूते गजायब गनीमे हरियं करियं क्रीमुल रहिमे चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते सुयंभव सुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदायंग संगे अपंगंग विभूते चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते सुयंभव सुभं

रत्ती के माते मतंग जरे जर संग नूप तंग सुरंग सुवारे कूट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे पारी पुजान के पूप पली बिद न्यावत सीस न जात बिचारे इते पय तो कहां पे पूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिर सब देश दिशान को बाजर ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसते है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्री पर श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिदारे तीर्थ नहन दया दम दान सुसंजम नेम अनेक बिसेख वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के पेख पौन आहार जति जर तार सब सुविचार हजार के देख श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रत्ती मिन एक ना लेख शुद्ध सि

सुबत नहीं चक चार लवैया। साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया। दानव देव फनेंद निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे। जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे। पुन प्रतापन बाढ़ जै तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे। साध समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सबे अवलोक चपेंगे। मानव इंद्र गजेंद्र नरहत बजौन त्रिलोक को राज करेंगे। कोट स्नान गजाद के दान अनेक सुयंबर साज भरेंगे। ब्रह्म महेश्वर विष्णु सची पत अंत फसे जम फांस परेंगे। जे नर श्री पत के प्रस है पग ते नर फेर न दे तरेंगे। कहा पयो जो दो लोचन मूत कह बैठ रहे भक्त ध्यान लगायो। नहात फिरो लिये सार समुन्द्रन लोक कयो पर लोक गवायो। बास कियो बख्यान सु बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबैस बितायो। साच कहो सुन लेहो सबे जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो। काहु लै पान पूज धरियो सिर काहु लै लिंग करे लटकायो। काहु लख्यो हर वाची दिशा मैं कहूं पिछा को शीस निभायो। कहु भूतान को पूजतो कहु भूतान को पूजत है बस को मृतान को पूजन तायो। कूर क्रिया और देव सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। कूर क्रिया और देव सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चाओ पाई। हमरी करो हाथ दर्शा पूरन हुए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबे तुम काब हो आप हाथ दे मुहे बचाव हो। सुखी बस है मोर परवारा सेवक सिख सबे करतारा। मोर शानिज कर दे करिया सब वैरन को आसंगरिया। पूरन हुए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें शाड कोई अब न त्याहूं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन शत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे बरिया है मरण काल का त्रास निवरिया है। हो जाओ सदा हमारे पश्चा श्री अस्तुज जो करी हो रक्षा। राख लेव मैं रख नहारे साहिब संत साहिब प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोग सवारा नमस्कार है ताये हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो। याद अंत के अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार। तिसी को मारी सकल प्रजा जने आप सवारी। सिवकन को सब गुण सुख दियो शत्रन को पलम बद कियो। घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पिछानत। चींटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पिछाने घट घट के पट पट की जाने। जाब उदकर्ख करा करतारा प्रजा तर तब दे अपारा। जब या करख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं। जेते बदन श्रेष्ठ सब तार आपे अपनी बूझ उचार। तुम सब ही तेरा तंद्रालम जानत भेद भेद अरे आलम निरंकार निर्विकार। आपे अपनी बूझ उचार तुम सब ही तेरा तंद्रालम जानत भेद भेद अरे आलम निरंकार निर्विकार। प्रजा तर तब दे अपारा। जब या कर करत हो कब हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं। जेते बदन श्रेष्ठ सब तार आपे अपनी बूझ उचार तुम सब ही तेरा तंद्रालम जानत भेद भेद अरे आलम निरंकार निर्विकार।

द्वार सगल द्वार को छाट कै गयो तुहारो द्वार बाहें गए की लाज अस गोविंद दास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

शब्द गावणे आईया शब्दो तां गाव हो हरि केरा मन जिने वसाया कहे नानक आनंद हो वा सतगुरु मैं पाया।

ना कीचै जित अंत पछोताई है। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरे नाले, कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, अंतो ना पाया कने तेरा अपना आप तू जान है।

सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया जी जंत सब तो दो पाए एक वेख परसन आया लभ लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया कहे नानक जिसनों आप तुठा तिने अमृत गुर ते पाया भगतां।

क्यों मनो विसारिया, जैसी अगन उधर मह तैसी बाहर माया, माया अगन सब इको जेही करतै खेल रचाया, जा तिस भाणा ता जम्मिया परवार, भला पाया लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया, ए माया जित हर विसरे मोह उपजे भाव दूजा लाया, कहे नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिनी विचे माया पाया, हर आप अमुलक है मुल ना पाया जाए, मुल ना पाया जाए किसे विट हो रहे लोक विल लाए, ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनो सिर सौंपिए विचों आप जाए, जिसदा जियो तिस मिल रहा है हर वसे मन आए।

ना पाए, हर रस पाए पल्लै, पिए हर रस बहुड़ ना तृष्णा लागे आए। एहो हर रस करमी पाईऐ, सतगुर मिलै जिस आए। कहे नानक होर आन रस सब विसरे, जां हर वसै मन आए।

सतगुरु आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर सोभा, चिंता लाहे हमारी रहाओ। अवर न सूझे दूजी ठाहर, हार परयो तो द्वारी। लेखा छोड़ अलेखे छूट है, हम निर्गुण ले हो उबारी। साद बख्शिंद सदा मेहरबाना, सबना दे आधारी। नानक दास संत पाशे परयो, राख लिहो एहो बारी। सज्जन सच्चा पातशाह।

एजियो पते जन परम्यात सतगुरु शब्द सुनाया सतगुरु जेवड़ दाता को ने सब सुनियो लोक सबाया सतगुरु ने सत्ता जिन विचो आप गवाया जिन सचो सत बुझाया जिन

जमण मरना हुक्म है, पाणे आवे जाए खाना पीना। जमण मरना हुक्म है, पाणे आवे जाए खाना पीना।

तरले भरा एक शब्द जोदड़िया नाल लिबड़े आया, एक वाक बेनतियां दे प्रवाह जारी करदा होया, एक बचन पर समय अपनी हालत प्रभु दे अगों प्रगट करन वाला ए महान शब्द धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा। अब कहने हे प्रभु तू मेरी उंगल पकड़, क्यों मैं चल नहीं सकदा, क्यों नहीं चल सकदे। हे प्रभु मैं वो बच्चा जिसने आज ही चलना सीखे है, और जिस बच्चे ने आज चलना सीखे है कोई लंबा नहीं कर सकता। एक कदम चलेगा, दो कदम चलेगा, तीसरे से डिगेगा, लाजमी डिगेगा। लेकिन इतनी गल भी स्पष्ट है, जिस दिन बच्चा एक कदम पुटदा है मां नु खुशी हो जाती है, बच्चे नु चलना आ गया है, प्यो प्रसन्न हो जाता है बच्चे ने पैर पुटे ने। खुशी नाल मां बाप फुले नहीं समांदे। जद किसी धार्मन मनुख दी सुरत ध्यान प्रभु दे मार्ग ते चल पैंदा है, चलो एक कदम ही सही चलिया ते है। एक कदम चल चलना, एक कदम दा पुटना बड़ी वड्डी करामात है, बड़ी वड्डी बख्शिश है। भाई साहब भाई गुरदास जी फरमान कर देने, चरण सरन गुर एक पैंडा जाहे चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे होए लेता है। तू एक कदम चलते सही, वाट लखां को दी है, चिंता न कर। कदम एक दी ही चिंता होनी चाहिए। अगर एक कदम किसी बच्चे ने पुटे है तो गल स्पष्ट हो गई, चलन दी जांच आ गई, ये चल पे। जिस दिन ये बच्चा तीन चार साल दा हो जाए ते पैर ना पुटे चले ना, मां नू चिंता हो जाती है, पिता नू पीड़ा हो जाती है। ले जांदे डॉक्टर कोलों, हो गया तीन साल दा, हो गया चार साल दा, पैर नहीं पुटदा। तीन चार वरियां दा हो गया अजेश दी जबान चो मां शब्द नहीं निकलिया। कहिंदे ने मां अखर सब तो पहले बच्चे दी जबान चो निकलता है, मम्मा अखर पहले निकलता है, मां मां ये पहला करण लग पैंदा है। मां शुरुआत है और अखीर दिच इस जबान चो अगर निकले वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, मां दा प्रत्यक्ष रूप ते प्रगट होया, मां मां मां दे छपे होया परमात्मा दा रूप वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। अगर ये नहीं प्रगट होया तो बच्चा जे बच्चा रह गया है, बुजुर्ग नहीं होया। मां कहना आया है, वाहेगुरु कहना कहना नहीं आया। जे मां निकले है अजे शरीरक जो मां सी उसका ना ते निकल आया, एदी जबान चो पावे मां ने नहीं आखिया मैं मां तेरी, लेकिन निकलिया प्रकृति इसके मुंह कढवांदी है। चाहे किसी की भाषा इंग्लिश होवे, परशियन होवे, अरबियन होवे, चाहे कोई हिंदी बोलता है, सिंधी बोलता है, पंजाबी बोलता है, दुनिया के तमाम बच्चों की जबान चो जो पहला अक्षर प्रगट आंदा है मम्मा ही आंदा है, मां मां मां। और जब जिंदगी का अंत होवे तो आखरी आखरी अक्षर ए होवे वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, जीवन यात्रा सफल हो गई, जगत ते आया सफल हो गया, मां ते निकलिया। और हर पीड़ा दे समय भी निकलिया हाय मां हाय मां, और मौत दे समय भी निकलिया हाय मां हाय मां। ये बच्चा बच्चा रह गया, अगे नहीं जा सकया। तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, हे प्रभु मैनू बोलन दी जाच नहीं आई, तेरे बोल मैं सुन सका
मेरे कोल कन भी कोई नहीं, मैं अपनी आवाज तेरे कन्ना तक पहुंचा सका, मेरी जबान नू अजे बोलन दी जाच नहीं आई। तेरे रस्ते ते मैं चल सका, वो पैर में कितों लियावा, हैगे ने मनुख कोल पैर, एक क्लब थिएटरां दे मार्ग ते चल देने, बाजार दे मार्ग ते चल देने, संसार दे मार्ग ते चल देने, कदी कदाई कोई कदम जो परमार्थ दे मार्ग ते चलन। सतगुरु कहिंदे मेरे कोल वो हाथ भी कोई नहीं जो तेरा दामन पकड़ सकन। हाथ है न मनुख कोल, कदी पुत्रां दा दामन पकड़िया, कदी पत्नी दा, कदी पति दा, कदी मां दा, कदी पिता दा, कदी मित्रां दा दामन पकड़िया, कदी भरावां दा दामन पकड़िया, कदी भैण दा दामन पकड़िया, कदी पड़ोसियां दा। हे प्रभु तेरा दामन पकड़ सका, अजे मेरे हत्थां दे चो सकत नहीं आई, अजे मेरे हत्थां दे चो पकड़ नहीं आई। हुंदा ते है हत्थां दे च कोई ना कोई दामन, हर एक दे हत्थां च हुंदा है, किसे दे हत्थे च मना है, किस दे हत्थे च पिता दा दामन है, उस दामन दे आसरे ते चल रहे, किसे दे हत्थे च भरावां दा दामन है, किसे दे हत्थे च पत्नी दा दामन है, पति दा दामन है, और किसे दे हत्थे च पड़ोसियां दा। कदी कदाई कोई कबीर जैसा, रविदास जैसा, रामानंद जैसा कह उठदा है, हे प्रभु मेरे हत्थां ते केवल तेरा ही पल्ला है। और धन गुरु नानक देव जी महाराज दे अगम्मी बोल, सबे साख कुड़ावे दिथे तो पल्ले तैडे लागी। उर्दू फारसी दामन कह देंदे ने, पंजाबी पल्ला कह देंदे ने। गुरु नानक कहंदे ने, हे प्रभु मेरे हत्थां ते केवल तेरा ही पल्ला है। सफल हो गए हथ, तेरा पल्ला मेरे हथे च आ गया। महान हो गए ने हथ, तेरा दामन मेरे हथा च आ गया। ते जब तेरा दामन मेरे हथा च आ गया, हुण जिथे तू उथे ए दामन मेरे हथा च, ए पल्ला मेरे हथा च। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा ए महान वाक अध्यात्मक गहराइयां नू अपने विच छुपाई बैठा है, जिसनू उजागर करन दी मैं एक निमाणी कोशिश कर रहा। भुज बलबीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेहो अंगुरिया, सर्वन सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। हे प्रभु ओ खूबसूरत नेत्र मैं कित्थों लियावा, जेडे तैनू वेख सकदे ने, इस तो ज्यादा होर कोई अखां खूबसूरत नहीं आउंदियां जिन्ना अखां दे च परमात्मा आउंदा है। वेखोगे अखां, किसे दी अखां दे च धन है, टपक रहा है लोभ, किसे दी अखां दे च रूप है, टपक रही है वासना, किसे दी अखां दे च उसकी औलाद है, टपक रही है ममता, ममता ही दसदी पई है अखां दे च दियां पुत्र ने, वाशना ही दसदी पई है अखां दे च रूप रंग है, क्रोध ही दस रहे है ए लाल अखां ही दस रहियां ने, अखां दे च कोई दुश्मन बैठ गया है और दुश्मन ने अखां लाल कर दितियां। अखां लाल नहीं होईयां, दुश्मन ने लाल कर दितियां, दुश्मन ने अपना रंग अधपक दित्ता। कदी कदाई ओ अखां जिन्हां दे च परमात्मा हुंदा है, और जद परमात्मा अखां च बैठता है, उन्हां नेत्रां तो कोई नेत्र खूबसूरत नहीं आउंदे। वो ऐसी खूबसूरत अख जिहदे चों प्रार्थना झलकदी है, जिहदे च प्रेम झलकदा है, जिसदे चों समदृष्टि झलकदी है, जिसदे चों दया डुल डुल के पैंदी है। उसे दृष्टि नूं आखिया गया अमृतमयी दृष्ट, अमृत दृष्ट। नहीं ते दृष्टि भी जहरीली होंदी है, जिवें कईयां दे बोल जहरीले होंदे ने, कईयां दी तकनी भी बड़ी जहरीली होंदी है, कईयां दे बोल जख्मी कर जांदे ने, कईयां दी तकनी भी आघात पहुंचांदी है, चोट पहुंचांदी है, गिरा के रख देंदी है। तकनी दे जहर भी है, तकनी दे अमृत भी है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई 2024 में, हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई 2025 में, हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
2: So the most, yeah, baby. Yeah.
3: Mercy.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूं कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। कहा कि इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट, पेशेंस

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर काल मुहूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा सब दुखे हरो हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक के

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੈ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੇ, ਤੈਂ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੇ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਭਵਿਸ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਸਭ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਮਿਲਣਾ ਵਿਛੜਨਾ, ਮਿਲਣਾ ਵਿਛੜਨਾ, ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਤਨੀ ਦਫ਼ਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਘਰ ਹਮ ਬਹੁਤ ਵਸਾਏ, ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਸਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣਿਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਿਆ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਨਮ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਰਨ। ਯਾਤਰੀ ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸਦਾ ਮੈਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਾਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਲਈਏ ਤਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਨ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਨ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਤਨ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਰੋਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਖਾਸੀਅਤ। ਤਨ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਐਸਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕਿਧਰੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਖਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿਮਿਆ, ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਜਾ। ਤਨ ਬਣਿਆ ਲਹੂ ਤੋਂ, ਬਿੰਦ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਕੀ ਰਖਤ ਪਿਤਾ ਬਿੰਦਾਰਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿੰਦ ਹੈ। ਬਿੰਦ ਤੇ ਜਿਨ ਪਿੰਡ ਕੀਆ, ਅਗਨ ਕੁੰਡ ਰਹਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੂਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ? ਰੋਟੀ ਤੋਂ। ਬਿੰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ? ਰੋਟੀ ਤੋਂ। ਔਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ? ਖੂਨ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਟੀ। ਬਿੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਟੀ। ਰਖਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿਮਿਆ, ਇਹ ਤਨ ਨਿਮਿਆ ਬਣਿਆ ਲਹੂ ਤੋਂ, ਬਿੰਦ ਤੋਂ। ਰਖਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿਮਿਆ, ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੜਾ। ਬਿੰਦ ਤੇ ਜਿਨ ਪਿੰਡ ਕੀਆ, ਅਗਨ ਕੁੰਡ ਰਹਾਇਆ। ਦਸ ਮਾਸ ਮਾਤਾ ਉਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਲਾ ਗਈ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਖੂਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਖੂਨ ਤੇ ਬਿੰਦ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਣਦਾ, ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਣਦਾ। ਤਨ ਬਣਿਆ ਭੋਜਨ ਤੋਂ, ਤਨ ਬਣਿਆ ਰੋਟੀ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਬਣਿਆ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਵੇਗਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਜੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭੋਜਨ ਨੇ, ਤੇ ਤਨ ਜੀਵਦਾ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਚਾਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਪੂਜਨੀਕ ਆਖਿਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ,
धन गोपाल धन गुरुदेव। हे गोपाल तू पूजन योग है, तू धनता दे योग है। फिर कहने धन गुरुदेव, हे गुरु तू भी धनता दे योग है, तेरे करके गोपाल दा पता चलता है, नहीं ते गोपाल दा पता भी ना चले। फिर कहने धन अनाद भूखे कवल टेके, हे अन्न हे रोटी तुम भी पूजन योग है, धनता दे योग है, पेट दे च पै जाए ते गुरु भी चंगा लगता है, रब भी चंगा लगता है, नहीं ते दोवे नहीं चंगे लगते। कबीर खुद कहते ने भूखे भगत न कीजे, ये माला अपनी लीजे। पहले अपनी माला, भूखियां भजन बंदगी नहीं होनी। धन गोपाल धन गुरुदेव धन अनाद भूखे कवल टेके। फिर एक चौथा भी पूज योग दसदे ने भगत कबीर, धन ओए संत जन ऐसी जाने, तिनको मिलबो सारंग पाने। ओ संत भी पूजनीक ने जिन्हां ने इस असलियत नू समझे कि अन्न भी पूजन योग है, गुरु भी पूजन योग है, प्रभु भी पूजन योग है। तन रोटी है, ये बनिया रोटी तो है, ये जीवेगा भी रोटी दे आसरे ते। मैं एक दफा फिर दोहराना, बिंद ते जिन पिंड किया अगन कुंड रहाया, रकत बिंद करने में आ तन किवें बनदा, लहू तो बिंद तो। ते लहू ते बिंद किवें बनदा है, रोटी तो और किस तो बनदा, भोजन तो। ये तन रोटी तो बने है, भोजन तो बना है। ये जीवेगा भी भोजन दे आसरे ते, बिना भोजन तो जी भी नहीं सकता। जीवन भर मनुख नू जड़ी प्रबल चिंता होंदी है रिजक दी, रोटी दी, ये भी मैर्ज करते हैं, कशिश रोटी दी है। उहदा एक कारण भी है, पानी दी ते बारिश भी होंदी है, रोटियां दी बारिश नहीं होंदी। पानी दे ते दरिया भी चलदे ने, रोटियां दे दरिया नहीं चलदे। पानी दे ते सरोवर भी होंदे ने, झीलां होंदियां ने, सागर है, रोटियां दे सागर कोई नहीं, रोटियां दे सरोवर कोई नहीं, रोटी लभनी पैंदी है। होर भी सुन लो, सतगुरु दी बाणी कहंदी है हर जगह रोटी नहीं है, जिथे रोटी है उथे जाके लभनी पैंदी है। हर जगह नहीं है, हर जगह मनुख दा रिजक नहीं पिया, जिथे है उथे जाके लभना पैंदा है। नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे जहां दाणे, जिथे रिजक पिया जिथे रोटी पई है। नख नथ खसम हथ किरत धक्के दे जहां दाणे तहां खाने, नानका सच है। महाराज कहते ने यही एक सच्चाई है, जिथे रिजक पे है उथे ही जाके लभना पैंदा है, खाना पैंदा है, जाना पैंदा है। किरत की बांधी जग फिरे चित बंधन अधीरा, रिजक खिची फिरदा है मनुख नूं सब जगह। मनुखता दी सारी भज दौड़, पंछियां दी सारी भज दौड़, पशुआं दी सारी भज दौड़ रिजक। शरीर दा भजना दौड़ना रिजक, रिजक भजाई फिरदा, रोटी भजाई फिरदी है। मैनूं फिर कहण देना, तन रोटी है और कुछ भी नहीं है। रखत बिंद करने में आ, ये खून ते बिंद तो पैदा होया,
माखी रकत पिता बिन दारा, मां दा लहू पिता दा बिंद किवें बणिया रोटी तो, तन बणिया रोटी तो, ये जीवेगा रोटी दे आसरे ते, सारी जिंदगी फिर मनुख रोटी लभदा ही रहिंदा, रिज़क ही लभदा। नोटां दे बंडल रोटियां दे बंडल ने, होर कुछ भी नहीं। मेरे पुत्र नूं मिलदी रहे, पोतरियां नूं मिलदी रहे, पड़पोतरियां नूं मिलदी रहे, रिज़क दी चिंता, रोटियां दी चिंता। तिजोरी विच सोने चांदी दा इकट्ठ, रोटियां दा इकट्ठ है, भविष्य दियां रोटियां, अज दियां नहीं, सत्तां पीढ़ियां दियां। चिंता रोटी दी और कुछ भी नहीं। भावें सतपुरश गुरबाणी कहिंदी है, कोई होर चिंता तू करनी है ते कर ले, रिजक दी चिंता ना कर। ना कर चिंत, चिंता है करते। जिसने जीवन बनाया है, जगत बनाया है, रिजक दी चिंता ओ करेगा। तू उद्दम ते करना है, चिंता नहीं करनी। रिजक लबना ते है, चिंता नहीं करनी। ना कर चिंत, चिंता है करते। सो करता चिंता करे, जिन उपाया जग। देखो किसी दे घर मेहमान होइए ते घर वाले नूं सारी फिक्र करनी पैंदी, किथे ठहराना है, की खिलाना है, की पिलाना है, किस तरह दा इस दा इंतजाम करना है। ये सारा ब्रह्मंड परमात्मा दा घर है, असी उस दे जीव, उनू फिक्र है, उनू फिक्र है। वो साड़ी चिंता दे च है, असी उसका चिंतन करिए, बस इन्नी गल है। उन्हें साडे नाल संबंध जोड़े हुआ है। सिर सिर रिजक संभा हेठा कर, काहे मन भव करिया। बिल्कुल चिंता करता है। ईरानी सूफी संत सादी ते इसनु होर बड़े बाकमाल ढंग नाल बयान करता है। कहिंदे गमे रोजी माखुर, कोई गम तू करना है, चिंता करनी है, कर ले, पर रोटी दा गम ना करें, रिजक दा गम ना करें। गमे रोजी माखुर, मजन और आके दफ्तर रा, के पेशे अस्तिफल एजद, कल को नद पस्ताने मादर रा। सादी कहिंदा है, बच्चे दा जन्म बाद दे चौंदा है, मां दे अस्तना दे च रिजक दुद्ध पहले बन जाता है। के पेशे अस्तिफल एजद, तिफल कहिंदे ने बच्चे दा, के पेशे अस्तिफल एजद, कल कुनद पस्ताने मादर रा, मां दे पस्तान दे च, मां दे अस्तना दे च दुद्ध पहले बन जाता है, बच्चे दा जन्म बाद दे च आउंदा है। इत्थों तू शिक्षा क्यों नहीं लैंदा? रिजक पहले है, जीव बाद दे च है, जीवन बाद दे च है। गुरवाणी फिर इस तरह बयान कर दिए, पहले देते रिजक संभाहा, पाछे देते जंत उपाहा। रिजक पहले पैदा होंदा है, जंतु बाद दे च पैदा होंदा है, जीव बाद दे च पैदा होंदा। गुरबाणी, पहले देते रिजक संभाहा, पाछे देते जंत उपाहा। मनुख नूं इस ते भरोसा नहीं आउंदा, इस गल ते भरोसा ना करना मानो परमात्मा ते भरोसा नहीं है, और वाकई परमात्मा ते भरोसा नहीं। पता है गुरु अर्जन देव जी महाराज की कहंदे ने, जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान ते मन प्रगटाया। तत्काल, तत् उसे वक्त, इधर भरोसा बज गया, इधर मनुख की समाधि लग जाती, लीन हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान प्रगट हो जाता है। तत् ज्ञान इस मन प्रगट आया, जाके हृदय विश्वास प्रभा आया।
ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਵੱਜ ਜਾਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਡੋਲਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡੋਲਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਕੀ ਡੋਲਦਾ? ਭਰੋਸਾ, ਸਿਦਕ ਡੋਲਦਾ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਡੋਲਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਜਦਾ। ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ, ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਦਾ ਜੋ ਤਨ ਤੇ ਤਲ ਤੇ ਪਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀਵੇਗਾ ਵੀ ਭੋਜਨ ਤੇ ਆਸ, ਬਣਿਆ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਨ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੜੇ ਉੱਦਮ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਾਮੀਰ ਹੋਈ ਏ। ਸਾਰੀ ਤਾਮੀਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ

0: खाना पीना जहर है, खाना पीना दारू है। क्यों ऐसा क्यों कह देता है? भूख है, खाना पीना अमृत है। एक एक बुरकी अमृत है, शरीर दी लोड़ा नु पूरा करेगी। भूख नहीं है, हुण एक एक बुरकी जहर है, रोग है। इस वास्ते वैद धनंतर ऐलानिया कहंदे सन, होर रोगां दा कोई कारण नहीं, नवे फिसदी आहार रोग खाने पीने तो रोग पैदा होंदे। आहार रोग, आहार चिकित्सा, आहार दारू, आहार ही औषधि है। खाना पीना औषधि है, खाना पीना रोग है। कीड़ा खाना पीना रोग है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने ऐसा फरमान कीता है, बाबा और खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। इस होर दे की अर्थ करोगे? निकम्मे चकरा च ना पै जाना। बाबा होर खाना खुशी खुआर, भुख ते है नहीं, होर खाई जाता है, भुख ते है नहीं। दो रोटियां नाल पूर्ति हो गई। गुरबाणी ग्रामर के मुताबिक यही अर्थ ने। मन मत नाल कोई अर्थ करे तो करदा फिर। बाबा होर खाना खुशी खुआ, भुख ते है नहीं, खा रहे है, एक एक बुरकी रोग होवे, एक एक बुरकी जहर बनेंगे, एक बुरकी शरीर देच अनर्थ पैदा करेगे। बाबा और खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। जरूरत तो खादा होया तन नु रोगी बनाएगा, मन नु विकारी बनाएगा, शक्ति अदक बनेगी, उदी लोड़ नहीं। तो मैं अर्ज करा, तन भोजन है, मन भोजन नहीं है। पर भुलेखे करके तन दियां लोड़ां नु मन ने अपनी लोड़ समझ ले, उहदे नाल की आउंदा है? तन ते लोड़ां दे तल ते सीमित रहिंदा है, तन दियां लोड़ां मन दे तल ते लोभ बन जांदियां ने। लोभ मन दे च आउंदा है, तन दे च नहीं आउंदा। तन ते तृप्त हो जांदा है, भुख मिट गई, तन ते साफ कह देंदा नहीं लोड़ हुण मैनूं। और सारियां ही तन दियां लोड़ां बिल्कुल सीमित ने, लोभ सीमित नहीं है, की नहीं सीमित। मनुख लोड़ा करके बेईमान नहीं आता, लोभ करके आता। मनुख लोड़ा करके भ्रष्ट नहीं आता, लोभ करके आता। मनुख लोड़ा करके धोखेबाज नहीं बनता, लोभ करके बनता। मनुख लोड़ा करके पापी नहीं बनता, लोभ करके बनता। कबीर, जहां लोभ तहां पाप है। लोभ जिथे उथे ते पाप होएगा, लब पाप दोए राजा मेहता, कूड़ हुआ सिकदास। अगर लोभ राजा है, गुरु नानक देव जी महाराज कहते, पाप वजीर आजम है, उसका नाल ही रहेगा। लब ते पाप दोवें कट्ठे रहेंगे, लोभ ते पाप दोहें कट्ठे रहेंगे। मैं फिर अर्ज करा, लोड़ा करके मनुख भ्रष्ट नहीं आता, लोभ करके आता। लोड़ां दी ते सीमा है, कितनियां लोड़ां ने? बिल्कुल सीमित ने, लोभ दी कोई सीमा नहीं। अरबां खरबां दी धन संपदा जमा हो जाए तां भी लोभ शांत नहीं होता, लोभ दी कोई सीमा ही नहीं। इस वास्ते इंज कह रही है, लखां पति भी मंगता है भुखा है भिखारी है, करोड़ां पति भी मंगता है भुखा भिखारी है, अरबां पति भी नंगा है भुखा है भिखारी है। बल्कि सतगुरु कहते ने, सगल श्रेष्ठ को राजा दुखी है। सारी सृष्टि का भी राजा बन जाए, दुखी दा दुखी रहे। कारण, शरीर दियां लोड़ां नो जद मन ने लोभ बना लिया, लोभ दी कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। गुरबाणी समझांदी है, मन तेरी लोड़ कुछ होर है। तू तन दी संगत करके तन दियां लोड़ां नूं अपनियां लोड़ां समझ बैठा है, तन ते बनया रोटी तो भोजन तो ठीक है, तू रोटी तो नहीं बनया, फिर तू किस तो बनया? कहो कबीर ए राम की अंश, तू ते राम दी अंश है। मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। हुण मैं इसका दूसरा पहलू बयान करा। जन्म तो ही तन दे अंदर भोजन दी भुख है, जन्म तो मन दे अंदर भजन दी भुख नहीं है। एक कथा तन वास्ते नहीं, इहदे नाल कोई पेट नहीं भरना। अगर पेट भर सकदा है तो फिर लंगर पानी दी कोई लोड़ ही नहीं। इस कीर्तन नाल तन दीआं लोड़ां दी पूर्ति नहीं आउंदी। वाहिगुरु वाहिगुरु दा जप कोई तन दीआं लोड़ां नूं पूरा नहीं करदा। इस चक्कर च ना पैणा, इह मन वास्ते है, इह मन वास्ते है। भोजन मेरे सामने पिया पर भोजन नाल मैं अपना तन ना जोड़ा, भाव बुरकी नूं मूंह च ना पावां, मेरी भुख नहीं मिटेगी। कीर्तन मेरे सामने हो रहा है, पाठ मैं कर रहा, पर मैं इस नाल अपना मन नहीं जोड़दा। यकीन जानो, बाणी पढ़द्या भी मन रोंदा पिटदा रहेगा, दुखी रहेगा, संताप ग्रस्त रहेगा, चिंतातुर रहेगा, सोगी रहेगा, भावें सारा दिन पढ़ता रहे बाणी। कहिंदे ने मैनू मिलदे ने कई, अज असी चार सुखमनी साहब दे पाठ कीते ने, मैं कि तेरा चेहरा ते दसदा पे एक पंक्ति भी नहीं तेरे मन ने सुनी। उस तरह ही सोग दे चै, चिंता दे चै, हंकार दे चै, विकार दे चै, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। 36 प्रकार का भोजन मेरे सामने पे, मैं बुरकी मूंह च नहीं पाई। चलो मूंह च भी पा ली है, स्वाद आ गया सर, पर मैं थले नहीं की थी, कंठ तो थले नहीं की थी। भुख नहीं मिटेगी, भुख नहीं मिटेगी। एक एक बुरकी ही अंदर जाएगी, भुख बाहर आएगा। मन दी भुख ये भोजन नहीं है। जन्म तो तन दे अंदर रोटी दी भुख है, भोजन दी भुख है। जन्म तो शरीर दे ना मन देच भजन दी भुख नहीं है। इतनी मर्ज करा नहीं है। विद्वान इंज भी कहते ने, जेदे अंदर हर वक्त भोजन दी भुख है, भुख तो मुराद है भिखारी, हर वक्त मनुख भिखारी है। पर किसे मन दे अंदर भजन दी भुख पैदा हो जाए, सिर्फ भुख, बादशाहां दा बादशाह हो जाता है, शहन शाहां दा शहन शाह हो जाता है। इनू मैं दूजे नुक्ते नाल बयान करा। संसार दे मार्ग ते चल के बहुत कुछ प्राप्त हो भी जाए, अखीर दे च पता चलता है कख नहीं मिले, कुछ भी नहीं, हथ खाली है। निरंकार दे मार्ग ते चल के, धर्म दे मार्ग ते चल के जे कुछ नहीं भी प्राप्त होया, बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। नहीं परमात्मा मिलया, परमात्मा दी प्यास मिल गई है, उदी तड़प मिल गई है, उदी भुख मिल गई है। भगतां ने इस ते भी शुकराना कीता। पता है क्यों? किसे मनुख नूं भोगन भुख ही ना लगे भोजन दी, तन दे तल ते, तो आयुर्वेद आचार्य कहिंदे ने तन रोगी है, रोगी बीमार। 104 डिग्री का बुखार चढ़िया होया, 36 प्रकार का भोजन परोस के उसके अगों रखे, कहिंदा नहीं मैनू भुख नहीं है। अगले कहिंदे ने 4 दिन का तू कुछ खादा नहीं, मंजे ते पिया, खा, कमजोर होंदा जा रहा है। वैद कहिंदे ने खा, कहिंदा भुख नहीं है। इतना जोर दा ताप उन्हें भुख नूं मार दिता है, भुख दे ताप नूं दबा दिता है। फिर जस उसनूं प्रेरदिया नहीं खा, नहीं तो शरीर निढाल होवेगा, कमजोर होवेगा। वो खांदा है, कहिंदा स्वाद नहीं। आपकी ज्ञातली अर्ज करा, आयुर्वेद आचार्य कहिंदे सारी जबान स्वाद नहीं मानती, कोई थोड़े जिहा तन तू ने जबान दे च ओ रस लैंदे ने। ओ बारीक तन तो जोर दे बुखार करके कमजोर हो जांदे ने, शिथिल हो जांदे ने। रस लैण दी उन्हां च समर्था नहीं रह जांदी, कम नहीं करदे। तो बंदे नूं भोजन दा स्वाद नहीं आउंदा, जदके है स्वाद ही। जो तंतु स्वाद माण सकदे ने ओ रोगी हो गए ने, रोग करके कमजोर हो गए ने, शिथिल हो गए ने, स्वाद नहीं आउंदा। कहिंदा स्वाद नहीं है, भुख दा ना लगना ते स्वाद दा ना आउणा, इस गल दी पहचान है तन रोगी बीमार है। हुण दूसरा पहलो, जिस मन दे अंदर भजन दी भुख नहीं है, नाम दी भुख नहीं है, मन रोगी है, रोगी है। ऐसे रोगियां दी तादाद बहुत थोड़ी है जिन्हां नूं भोजन दी भुख नहीं लगदी। ऐसे रोगियां नाल सारा संसार भरिया पिया जिन्हां नूं भजन दी भुख लगदी नहीं, लगदी नहीं। किधरे एक दिन रोटी नहीं खाधी, सौआं नूं दसदा फिरदा अज ते मैं खा रोटी खाण दी वेल नहीं मिली, नहीं खाधी, अज ते भुखे रह गए। घर वाले भी चिंता करदे ने, महीना महीना नितनेम नहीं कीता, गुरुद्वारे नहीं आया, जप नहीं कीता। ना घर वालियां नूं अफसोस, ना इहनूं अफसोस, क्यों? ना घर वालियां नूं भुख लगदी है भजन दी, ना इस नूं लगदी। घर वाले भी रोगी, ए भी रोगी। ऐसे रोगियां दी तादाद बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है जिन्हां नूं भोजन दी भुख नहीं लगदी। ऐसे रोगियां नाल सारा संसार भरिया पिया जिन्हां नूं भजन दी भुख लगदी नहीं। महाराज कहिंदे सारे ही रोगी ने, जो जो दिसे सो सो रोगी। ते रोगी दी पहचान की होवेगी, खुद फैसला कर लेना। इहनूं साधी कहिंदे ने तो खुद बा मुनसब सुध, अपना फैसला आप कर, दूजे तो ना करा। तू की है, दूजा की जानदा तेरे बारे, तेरे विचार की ने, तेरी सोचनी की है, तेरा चिंतन की है, दूजे नूं की पता, उते चित्र गुप्त है, अपना फैसला आप कर। जो तू दिखाई दे रहे हैं तू ओ नहीं है, जो तू सोचदा रहना है तू ओ है। जो तू दिखाई दे रहे हैं तू ओ नहीं है, जो तेरे अंदर विचार चलते रहने तू ओ है। जो तू दिखाई दे रहे हैं ते दुनिया जो कुछ तेनू जान दिए ते कह दिए तू ओ नहीं है, जो तेरे अंदर चिंतन चलता रहता है तू ओ है। कहिंदे ने एक कोई मनुख सारी दुनिया नू देखदा है, सूरज चंद तारियां नू भी देखण दी इच्छा है, उत्थे जाण दी भी इच्छा है, अपने आप नू नहीं देखदा, नहीं देखदा। हर मनुख सारियां दे ते नेड़े होना चाहुंदा है, अपने नेड़े ने। चलो मैं इस तरह भी बयान करा, एक पति अपनी पत्नी दे जितने नेड़े है अपने नेड़े नहीं है। पत्नी बारे बहुत कुछ जानदा है, उदे गुण अवगुण सुभा सब कुछ जानदा है, अपने बारे कख भी नहीं जानदा, कुछ भी नहीं पता। ते हुण मैं इंज भी अर्ज करा, एक पत्नी पति बारे बहुत कुछ जानदी है, बड़ा कुछ पता है, उदी हर कमजोरी दा, उदे हर अवगुण दा, उदी हर खूबी दा, उदे हर सुभाव दा पता है, अपना कख भी नहीं जानदी, कुछ भी नहीं पता। एक पिता अपने पुत्र दे जितना नेड़े है अपने नेड़े नहीं है। एक पुत्र पिता दे जितना नेड़े है अपने नेड़े नहीं है। एक भरा जितना भरा दे नेड़े है अपने नेड़े नहीं है। जद अपने तो ही दूर है, आई दूर, बिल्कुल दूर, तो अपनी असलियत का पता नहीं चलता। अपनी असलियत का पता, अपने नेड़े आण का मतलब अपने विचारां दे नेड़े आवना, अपनी सोचनी दे नेड़े आवना, अपने चिंतन दे नेड़े आवना। मैं की याद करता रहना, मैं की सोचता रहना, मेरे अंदर केड़े विचार चलते रहते। अगर कोई इस नूं देखण वाला है तो गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने गुरमुख है, इहो मन आर सी कोई गुरमुख देखे, ते गुरमुख है। ਇੱਥੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਗੰਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਗੰਦੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਗੰਦੇ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਆਖਿਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਿਰਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਜਾਂ ਇੰਜ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 100% ਲੋਕੀ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ, ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾ ਹੈ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲਏ ਜਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਮ ਦੇ ਚ ਮਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਕਰਮ ਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਮ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਰਮ ਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਚੋਰੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਆਉਂਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਡਰ, ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਨ ਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਪੂਰਾ ਮਨ ਆਉਂਦਾ। ਜਦ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਆਉਂਦਾ। ਜਦ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਆਉਂਦਾ। ਜਦ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟਦਾ, ਉਸਦੇ ਚ ਪੂਰਾ ਉਸਦਾ ਮਨ ਆਉਂਦਾ। ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਜੇਬ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਇਕਾਗਰ ਕਿਵੇਂ ਆਊਂ। ਕਿਸੇ ਡਕੈਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਡਾਕਾ ਡਾਲਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਰ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਨ ਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕਾਗਰ ਆਉਂਦਾ? ਨਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਡਰ, ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਬੰਦਾ ਮੰਨੇ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਮਨ ਹੈ, ਹਰ ਕਰਮ ਭਗਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਯਕਸੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ, ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਗੀ ਹੈ ਔਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ, ਅਚੇਤ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗਾਏ। ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੈਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਦਾ ਅੰਦਰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹ ਮਿਟਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਕਾਮ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਲੋਭ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ, ਸੰਤੋਖ और नाम एकाग्रता दे नाल ना जपया ना पढ़िया बाणी नू तो विकारां दे संस्कार बनते जाणगे। कर कर करना लिख ले जा, जिहड़ा कम असी पूरे मन नाल करदे अंदर लिखिया जाए। अनर्थ अंदर बड़ा लिखिया होया क्योंकि अनर्थ पूरे मन नाल करदे आ, गलतियां पूरे मन नाल करदे आ, धोखा फरेब छल कपट पूरे मन नाल मनुख करदा, बड़ी सावधानी नाल करदा, अंदर बड़ा भारी अनर्थ है। कर कर करना लिख ले जा, जितना मन दा भाग जागे होया है। विद्वान कहंदे ने एक भाग जागे है नौ ते सुते पैन, सिर्फ एक भाग। वो जिहड़ा एक भाग जागे होया है उसनू पूरी उसे एक भाग दे जागृति दे नाल जप करिए, इतनी समर्था फिर मिल जाती है, बाकी नौ हिस्से जाग पैंदे। जागे होया मन भगवान हो जाता है, सुता होया मन शैतान हो जाता। मन तू जो स्वरूप है अपना मोल पछाण। हुण एक दो नुक्ते होर भी मैं थोड़े सामने बयान करा। एकाग्रता बनन लग पई है, रस आण लग पै है। अगर वाहिगुरु आखण दा रस आण लग पै है तो समझना मन अरोग होंदा जा रहा है, जागदा जा रहा है। सोना ही रोग है, जागना ही तंदुरुस्ती है। अगर वाहिगुरु आखण दा रस आण लग पै है, कीर्तन सुनन दे स्वाद आण लग पै है, बाणी जपण दे रस आण लग पै है, गुरुद्वारे आण नू उत्साह पैदा होंदा, उमंग पैदा होंदी है, तो समझना मन जागदा जा रहा है, तंदुरुस्त होंदा जा रहा है, रोग मिटदे जा रहे हैं। अगों फिर एक खतरा है, अनंत जन्मां तक जो असी जीवे हां वो उन्हां संस्कारां विच जीवे हां जो संस्कार काम तो बने ने, लोभ तो बने ने, अहंकार तो बने ने, क्रोध तो बने ने, मोह तो बने। अनंत जन्मां तो इन्हां ही संस्कारां विच जी रहे हैं, जी रहे हैं, लोभ आश्रित जी रहे हैं, काम आश्रित जी रहे हैं, अहंकार आश्रित, इसे दे ही संस्कार ने। जैसे मन जुड़दा है नाम दे, कदों जुड़दा है जब भुख पैदा होती है, ये सारे संस्कार मिटदे ने, तो सारा संसार खत्म होता है। वही संसार साडा है, उसे च अज तक जीवे होंदे हैं। मनुख नूं पहली दफा अनुभव होंदा है जिवें मैं मर रहा हूं, खत्म हो रहे, स्याही भी छांदी है। एक नहीं, मैनू सैकड़े अभ्यासियां ने कहा है असी ते डर दे मारे छोड़ दिता है, नहीं कीता, कई चीख भी उठे ने, ऐ की होण लगे ते खत्म होण लग गया। पर कीता की जाए, मन खत्म होण लगा है। अज तक हजारां तरह दे जो अंदर संस्कार पए ने, जिन्हां दे च असी जी रहे सी, वह खत्म हो रहे। एक नवी जिंदगी का जन्म आता है, पुरानी जिंदगी मिटती है। इनू कहने द्विज, दूजा जन्म। एक जन्म मां बाप तो होया है साडा, पर एक जन्म जप तो होंदा है, शब्द तो होंदा है, गुरु तो होंदा है। सतगुर के जन्मे गमन मिटाया, बड़ी कीमती पंक्ति है। मां बाप दे घर जन्म लिया सी, जन्म मरण चलदा ही रहा है, चलदा ही रहा है। गुरु दे घर जन्म हो गया, जमना मरना मिट गया। सतगुर के जन्मे गमन मिटाया, ये आवागमन मिट गया, ये जमना मरना मिट गया। क्यों? हुण गुरु दे घर जन्म हो गया। मां बाप दे घर जन्म होंदा है पुत दा, सुत दा। गुरु दे घर जन्म होंदा है संत दा, भगत दा। और मैं अर्ज करा, संत नहीं मरदा, संत अपने घर दे टिक जांदा है। संत मोए क्या रोइए जो अपने ग्रह जाए, रोवो साकत वापरे जो हाटे हाट बिकाए। संत जीवदियां जी इस तन तो उच्चा उठ जांदा है, इसनूं कहिंदे ने जीवत मृतक, मुरदे वांग मुरीद होए। जीवत मरे मरे फन जीवे ऐसे सुन समाया अंजन माहे निरंजन रहिए बौल ना बहु जल्द आया स्वास्थ्य चल दे पैने जीवदा पे जीवत मरे मन दे तल ते मर गया आज तक दी जो जिंदगी सी अहंकार आशत लोभ आशत काम आशत जो बने संस्कार सन जिन्हां दे जी रहे सी खत्म जब खत्म होण लगदी है भय उसे तरह ही पैदा होंदा है जिवें शरीर खत्म हो रहा है डर उतना ही लगदा है जिवें शरीर खत्म हो रहा है कई इत्थों वापस मुड़दे ने एक नहीं चंगे चंगे अभ्यासियां ने कह दिता मैनू कि ज्ञानी जी ये की हो रहा है असीं ते छोड़ बैठे हैं ते खत्म होण लगे सी मैं कि ठीक है खत्म होण लगे सी अज तक जिस तरह की दुनिया जीवे आ वह खत्म होण लगी सी ते जे किधरे डरदे ना भजदे ना नवा जन्म हो जाना सी फिर मां मां नहीं दिखाई देनी सी मां भी रब का रूप दिखाई देना सी पिता भी रब का रूप दिखाई देना सी फिर आ भी रब का रूप दिखाई देना सी पत्नी पति भी रब का रूप दिखाई देना मात पिता सुत बंधव भाई नानक होआ पार ब्रह्म सहाई सारा परिवार निरंकार का रूप दिखाई देना सी ते सारा परिवार की सारा संसार निरंकार का रूप दिखाई देना सी जो दी से सो तेरा रूप गुण निधान गोविंद न अनूप ए विस संसार तुम देख दे ए हर का रूप है हर रूप नदरी आया जीवदा रहे तू पहले परिवार दे संसार दे हुण तू जीवना सी निरंकार दे जीवदा रहे अज तक तू पदार्थां दे हुण जीवना सी परमात्मा दे पदार्थां दा जीवन ते परमात्मा दा जीवन इते जमीन आसमान दा अंतर है पहला जीवन वाकई खत्म होंदा है द्विज दूजा जन्म होंदा है तो भय उतना ही पैदा हो जाता है जिवें शरीर की मौत चंगे चंगे अभ्यासी जिन्होंने मैनू दसिया ते मैं कि किधरे उस भय नू एक पासे सुट देंदे किधरे पहले बोध होंदा बड़ा कीमती अवसर गवा दिता ते जिन्हां नू मैं दसिया कि कोई बने ते डरना ना ते कईयां ने रोंदे होए आखिया खेड बनी ने नहीं बनी उदों डर करके मुड़ गए वापस हो गए तो मैं अर्ज करा ऐसा महसूस होएगा अगर कोई अभ्यास करता है मैं खत्म हो रहा वो जन्मां जन्मांतरां दे संस्कार जिन्हां दे अज तक जीवदे रहे हां खत्म होंदे ने एक नवी दुनिया का जन्म आउंदा है ऐसी दुनिया जो कदी नाश नहीं आउंदी ऐसी दुनिया जिस दे सदा नवीनता बनी रहिंदी है महारस बनिया रहिंदा है महा आनंद बनिया रहिंदा है उसे नूं कह देंदे ने हुण असी संसार तों निकल के निरंकार दे च लीन हो गए हुण पदार्थ तों निकल के गोविंद दे च लीन हो गए गोविंद दे च लीन होके गोविंदा रूप हो गया बूंद सागर दे च लीन होके सागर हो जांदी है अलग नहीं रह जांदी दरिया सागर दे च लीन होके वो सागर हो जांदा है गंगा नर्मदा जमुना नहीं रह जांदी वो सतलज ब्यास नहीं रह जांदा वो दजला फरात नील नदी नहीं रह जांदी वो ते सागर हो जांदा है परमात्मा दे च लीन होके ना मनुख हिंदू रह जांदा ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई परमात्मा दे च लीन होके मनुख परमात्मा ही हो जांदा है ईश्वर दा रूप हो जांदा है एवें नहीं कबीर ने कह दिता सी ना हम हिंदू ना मुसलमान अल्लाह राम के पिंड परान जिस रब दे च लीन हो गया कबीर ओ रब मुसलमान नहीं है ओ रब हिंदू नहीं है कलगीधर पातशाह कहने नमस्तंग अम अजबे नमस्तस्त अजबे नमस्कार है परमात्मा तैनो तेरा कोई मजहब नहीं तेरी कोई जात पात नहीं तू सारे थावां दे च वसदा है तेरा कोई एक मुलक नहीं सारा ब्रह्मंड तेरा मुलक है जैसे जद कोई परमात्मा दे च लीन होंदा है ये सारियां दीवारां गिर जांदियां ने भाषा दी दीवार मुलक दी दीवार मजहब दी दीवार जात पात दी दीवार तरह तरह के संस्कारां दी दीवारां ये सारियां गिर जांदियां ने मनुख निरंकार दा रूप हो जांदा है उसे नूं गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज फरमान पै करदे ने गुर किरपा जै नर को कीने ते ए जुगत पछाने नानक लेन भयो गोविंद सिंह, ज्यों पाने संग पाने। जिस दिन बोंद सागर दे चलेन होंदी है, ओ ही जाने सागर हो गए, असीम हो गए, उन्हें नापी तोली नहीं जा सकती। असीम होण दी संभावना मनुख दे अंदर छुपी हुई है, ताई ते मनुख रजदा नहीं असीम होना चाहता। महान होण दी संभावना मनुख दे अंदर छुपी हुई है, ताई ते मनुख किधरे राजी नहीं होंदा, संतुष्ट नहीं होंदा। मैं फिर अर्ज करा, जितने चिर तक मनुख नूं परमात्मा नहीं मिलिया, रजेगा नहीं, त्रिपत नहीं होवेगा, सुखी भी नहीं होवेगा, कुरलांदा रहेगा, रोंदा ते पिटदा ही रहेगा। जीवन दा लक्ष्य है परमात्मा दी प्राप्ति है। जीवन मिले है परम जीवन दी प्राप्ति लई, परम जीवन परमात्मा है, ऐ जीवन संसार है। इस संसार तो उच्चे उठ के निरंकार दा जीवन प्राप्त करना इस जीवन दा लक्ष्य है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बख्शिश करन, इसे जीवन विच इस लक्ष्य नूं असीं प्राप्त कर सकीए। यही तेरी अवसर, यही तेरी वार, घट भीतर तूं देख विचार, इस अवसर नूं गवाह ना देईए। ये अवसर हथों चला ना जाए, वारी मिली, एक अवसर मिले है। भई प्राप्त मानुख दे होरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी वरिया। तू चोटी दा धनवान बन गया, गुणवान बन गया, साइंटिस्ट बन गया, मिनिस्टर बन गया, चौधरी बन गया, सब रस्ते दे पड़ाव ने, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रोंदा रहेगा, पिटदा रहेगा, कुरलांदा रहेगा, दुखी रहेगा, संताप ग्रस्त रहेगा, उतने चिर तक जितने चिर तक परमात्मा नहीं मिल जाता, अकाल पुरख नहीं मिल जाता। सतगुर रहमत करन सारिआं ते, बख्शिश करन, ऐसी सूझ देन, ऐसी समझ देन, ते असी उसका पूर्ण तौर ते यतन करिए, ताकि इसे जीवन विच परम जीवन नूं प्राप्त कर सकीए। यही धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का उपदेश है, संदेश है। इतनी विचारां इस वक्त प्रवान करनियां, कल सवेरे शाम ते परसों सवेरे दी हाजरी भर के दासां ने इत्थों फिर झांसी चले जाना है। सारे जथे भी झांसी जाणगे, फिर कलकत्ते विसाखी ते फिर दासां ने धन गुरु अंगद देव जी महाराज दे 500 साला शताब्दी पुरब ते खंडूर साहब जाना है, अमृतसर, पटियाला, होर पंजाब दे वख-वख पिंडां विच 500 साला जयंती दे संबंध विच दास ने हाजरियां जो है भरनिया ने, ते हुण जिहड़े नाल आए हुए जथे ने वाकई अपने अपने फुलां दी महक लैके आए ने। इन्हां कोल जो कला है, जो प्रभु ने दित्ती है, जो गुरु ने दित्ती है, सतगुर रहमत करन इन्हां दी कीर्तन दी धुनां दे नाल वह आप भी करते नाल जोड़न, ते थानू भी जोड़न दा जो है उपराला दे सकन। इस तरह तुसी भी जुड़ सको, ताकि सुनना ते सुनाना दोहां दा सार्थक हो सके। ये अज दा कीर्तन प्रबंधक सज्जन तुहाडे सामने सारी ले सरवण करा देंदे ने। पहले आरंभता करनगे अमृतसर तो आए भाई साहब भाई हरजीत पाल सिंह जी, दूसरी लिस्ट ते जो नाम है सारे दे सारे प्रबंधक तुहाडे सामने इन्हां दे नाम सुनाई जांदे ने। जो कुछ आपने सरवण किया सारिआं दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। बोल चुक दी शमा पते प्रवान करने।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

खतरे च होवेगी। फिर ते बहुतिया की जान खतरे च होवेगी, बहुतिया का माल खतरे च होवेगा, अगर असंतुष्ट मनुख दे कोल शक्ति आ जाए, ताकत आ जाए। कानून कहते हैं कमजोर मनुखां दे लई है, ताकतवरां लई नहीं है। कमजोर की है, जो है कानून की है, एक मकड़ी का जाला जिद छोटे छोटे कीड़े मकोड़े फस जाते हैं, हाथी तोड़ के लंघ जाते हैं। यह भी मैं अर्ज करते हैं, असंतुष्ट मनुख दे कोल अगर शक्ति आ जाए, ताकत आ जाए, तो वो जितनिया तबाइया जन्म दे सकता है। एक दफा ते इतिहासकार भी कम उठते हैं, उन्हां दी कलम भी कम उठती है, उन्हां दी लेखनी भी कम उठती है। ईरान का एक महान प्रसिद्ध सूफी फकीर होया है शेख सादी, वो कहिंदा है ई चुनी अरकान ने दौलत मुल्क वीरां में शबद। अगर इस तरह का साजो समान किसी मुल्क विच जमा हो जाए तो कहिंदे समझ लो मुल्क वीरान हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। किस तरह का साजो समान, कैसा साजो समान, वो इसकी व्याख्या करता है। गुर्ग मीरो सग वजीरो मूश दीवा में शबद। जिहड़ा मीर है, राजा है, हुक्मरान है, वो ऐसा होवे जैसा गुर्ग बगयाड़। गुरु नानक देव जी महाराज ने भी अपने ढंग नाल व्याख्या की थी है, राजेशी मुकदम कुत्ते। बहुत सुंदर नक्शा खिंचे है अपने दौर विच, अपने समय विच जो वातावरण सी। ये फकीर कहिंदा है मैं नजूमी ते नहीं हाँ, मैं ज्योतिषी ते नहीं हाँ, पर मैं फिर भी दस सकदा कि अगर इस तरह का साजो समान किधरे जमा हो जाए, मुल्क बर्बाद हो जाता है, मुल्क नेस तो नाबूद हो जाता है, वीरान हो जाता है, उजड़ जाता है। इं चुनी अरकान ने दौलत मुल्क वीरां में शबद। कैसा साजो समान, कहिंदा है गुर्ग मीरो जिस देश का राजा बगयाड़ हो, सग वजीरो ओदे जिहड़े वजीर होवन ओ कुत्ते होवन, ओ चीरे फाड़े ते ओदा बचिया कुचिया ए कुत्ते खान। गुर्ग मीरो सग वजीरो मूश दीवा में शबद। दीवान जेड़ा है जो प्रजा दी गल हुक्मरान तक पहुंचावे, वो ऐसा होवे जैसे मूश चूहा। हिंदी च भी मूसा कहिंदे ने, पर्शियन दे च भी मूश कहिंदे ने। मूश दीवा में शबद, दीवान जेड़ा है वह मूश होवे, वो प्रजा दी गल टुक देवे, असलियत पेशी ना आउण देवे। चूहे का कम की है, टुक देना, भावें वह खावे भावें ना खावे, पर टुक देंदा है। टुकना उसकी फितरत, टुकना उसकी सुभाव। इतनी ईर्षा होवे टुक देवे। दीवान ऐसे होवन जैसे कि चूहे। मैं देखदा सिख जगत नू काफी समय तो कई चूहे टुक दे पे, इन्हां दा परोपकार, इन्हां दी शहाद टुक के रख दो। भई इतिहास दे च देश नू आजाद कराया है, इन्नियां कुर्बानियां टुक दो। ये दानी ने, ज्ञानी ने, अमृत वेले उठण वाले ने, नाम जपण वाले ने, परोपकारी ने, सब कुछ टुक दो, कट दो, टुक दो इतिहास नू, टुक दो सच्चाई नू। चूहा टुक देंदा है। शेख सादी का यह बड़ा सोहना एक कलाम, कहिंदा मूश दीवा में शबद। जिहड़ा दीवान है ना, ये मूश होवे, चूहा होवे, असलीयत नूं ही टुक के रख देवे, असलीयत जाहिरी ना आउण देवे। कहिंदे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे मासूम लाडले जब सूबा सरहंद की कचहरी पेश किए गए,